सुप्रभात, आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज दिन शुक्रवार है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की तिथि 18, तदनुसार 8 मई सन 2026। इस समय सुबह के ठीक 5:58 हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा, और इस सभा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के ठीक 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह की ठीक 6:10 हुए हैं और आप इस समय हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। और अब लीजिए सुनिए दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें। इसके अंतर्गत आज की वार्ता का विषय है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ कैसे लें किसान। इस विषय पर आइए सुनें।

किसान भाइयों जोहार। खेती की बातें में आज हम बातें करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। देश की आधी से ज़्यादा आबादी आज भी खेती पर निर्भर है, लेकिन किसानों की ज़िंदगी आसान नहीं होती। खेत में मेहनत पूरी लगती है, लेकिन मौसम कब साथ छोड़ दे इसका भरोसा नहीं। कभी बारिश ज़रूरत से ज़्यादा, कभी बिल्कुल नहीं, तो कभी ओलावृष्टि या तूफान पूरी फसल पर पानी फेर देते हैं। ऐसे में किसानों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि नुकसान की भरपाई कैसे होगी। तो ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है, सरकार ऐसी स्थिति में किसानों को मदद देती है। इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। यह योजना सिर्फ नुकसान की भरपाई नहीं करती, बल्कि किसानों की आय को स्थिर रखने और ज़रूरत पड़ने पर लोन लेने को आसान बनाने में भी मदद करती है। अब सवाल यह उठता है कि इसका फायदा कैसे मिलता है। इस योजना का दायरा काफ़ी बड़ा रखा गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे जुड़ सकें। पात्रता को लेकर ज़्यादा मुश्किल नियम नहीं है, लेकिन सिर्फ वही फसल इस योजना में शामिल होती है जिसे सरकार ने उस इलाके के लिए नोटिफाई किया है। ज़मीन के मालिक किसान इसमें शामिल हो सकते हैं। बटाईदार और किराए पर खेती करने वाले किसान भी पात्र हैं। जिन किसानों ने बैंक से फसल लोन लिया है, उनके लिए बीमा ज़रूरी होता है। बिना लोन वाले किसान अपनी इच्छा से इसमें जुड़ सकते हैं। कुछ फसलें हैं जिसमें बीमा कवर दी जाती है, जैसे अनाज और दलहन, तिलहन, बागवानी फसलें और व्यावसायिक फसलें। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर राज्य में कुछ तय फसलें ही कवर होती है, इसलिए आवेदन से पहले लिस्ट जरूर देख लें। अब बात करते हैं असली मुद्दे की, कि नुकसान होने पर पैसा कब और कैसे मिलता है। इस योजना में अलग अलग तरह के जोखिम कवर किए जाते हैं, जिससे किसान को हर स्टेज पर सुरक्षा मिल सके। बुआई न हो पाना, जैसे कम बारिश या खराब मौसम, खड़ी फसल का नुकसान जैसे सूखा, बाढ़, कीट या तूफान, कटाई के बाद 14 दिनों तक का नुकसान जैसे बारिश या चक्रवात, स्थानीय आपदाएं जैसे जलभराव या भूस्खलन। इसके लिए प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा नहीं है। खरीफ फसल के लिए मात्र 2% और रबी फसल के लिए 1.5%। बागवानी और व्यावसायिक फसलों के लिए आपको 5% तक प्रीमियम देना पड़ सकता है। बाकी का खर्च सरकार उठाती है, जिससे किसानों पर बोझ कम रहता है। इस योजना को इस तरह बनाया गया है कि किसान आसानी से आवेदन कर सके और समय पर पैसा भी मिल जाए। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या CSC सेंटर पर जाकर ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। बुआई के 10 दिनों के अंदर आवेदन करना जरूरी है। नुकसान होने पर 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी या अधिकारी को जानकारी दें। अधिकारी मौके पर आकर नुकसान का आकलन करते हैं। रिपोर्ट सही पाई गई तो क्लेम पास हो जाता है। मुआवजे की राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है। अगर किसान समय पर जानकारी देता है और सारी प्रोसेस सही तरीके से पूरी करता है, तो इस योजना के जरिए नुकसान की भरपाई काफ़ी हद तक आसान हो जाती है। तो किसान भाइयों, यदि आप भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ उठाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। थोड़ी जानकारी हासिल कीजिए और फसल बीमा के लिए आवेदन ज़रूर कीजिए। खेती की बातें में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति। जोहार।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ कैसे लें किसान, इस विषय पर आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें के तहत ये वार्ता, और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 6:15 और 35 सेकंड हुए हैं और अब लीजिए सुनिए आज का चिंतन। जीवन का सच्चा सुख बाहर की चकाचौंध में नहीं बल्कि भीतर के संतोष में छिपा है। यदि हम अपने भीतर संतोष का दीप जला लें तो किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रह सकते हैं। वही व्यक्ति वास्तव में समृद्ध है जो संतोष से भरा है और वही निर्धन है जो विलासिता के जाल में फंसा है। इसलिए तो कहा गया है कि संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। संतोष का महत्व केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी इसका बड़ा योगदान है। यदि हम सच्चे अर्थों में एक स्वस्थ और संतुलित समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो संतोष को अपनाना और विलासिता के मोह से बचना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। ये था आज का चिंतन। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। इसके तहत आइए सबसे पहले सुने देश वंदना।

संवेद स्वर में आप सुन रहे थे देश वंदना। वंदना कार्यक्रम में आइए अब सुने भजन ओम व्यास की आवाज में।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना में आज आप सुन रहे थे ओम व्यास और साथियों की आवाज़ में भजन, और इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न हुआ।

मुनि याज्ञवल्क्य ने ऋषि भरद्वाज को राम कथा सुनाते हुए पार्वती की कठोर तपस्या का वर्णन किया। शिव पार्वती के विवाह के प्रसंग में उन्होंने संक्षेप में कार्तिकेय के जन्म की कथा भी सुनाई। शिवजी का चरित सुनकर मुनि भरद्वाज अत्यंत प्रसन्न हुए। उस कथा को आगे सुनने की उनकी लालसा और भी बढ़ गई। ये जानकर मुनि याज्ञवल्क्य अतिशय प्रेरित हुए, बोले, शिवजी के चरणों में जिनकी प्रीति नहीं होती उन्हें श्री राम की कृपा भी प्राप्त नहीं होती।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह की ठीक 7 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। इसमें 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल अबुधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रायंस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार अभी आपने सुने। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह की 7:05 हुए हैं और आप इस समय हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो.
4: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया. मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी.
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं.
4: तो फिर सही नंबर,
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड.
4: आपने तो बचा लिया दीदी.
3: काम से नहीं.
2: आरबीआई कहता है
1: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव.
5: दस लाख की लॉटरी मुझे.
6: फर्जी ऑफर्स से सावधान.
1: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
7: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी.
8: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में.
9: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक.
10: खो गया इंतजाम.
11: किसका?
10: गुड्डी की फीस का.
11: दिखा. 20,000 का लोन तुरंत. पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर. हो गया इंतजाम. पगार एडवांस में भेजिए.
2: आरबीआई कहता है
1: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव.

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोता, हम आपको बता दें, हमारी इसी सभा में सुबह 7:20 पर लोकगीतों के कार्यक्रम में सुनिएगा आज भोजपुरी लोकगीत, कलाकार होंगे मनोरंजन ओझा। सात बजकर 7:35 पर बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि के तहत आज हम आपको सुनवाएंगे अभिरूप गुहो ठाकुरता की आवाज में रविंद्र संगीत। थैलीसीमिया लक्षण, कारण और बचाव, इस विषय पर हमें बतलाएंगे डॉक्टर तपन कुमार चटर्जी। कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के तहत सुबह ठीक 7:50 पर।

8:45 मिनट पर महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित कार्यक्रम सुनेगा गांधी चर्चा। इसके अंतर्गत आज की चर्चा का विषय है महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों में गांधी और नस्लवाद। क्षमा करें श्रोताओं, वार्ता का विषय है गांधी और नस्लवाद। वार्ताकार होंगी रमा तिवारी।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 7:10 हुए हैं और अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनिए चंदन दास की आवाज़ में ये गज़ल।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे चंदन दास की आवाज में ये गजल, और इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

104.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और इस समय आप हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ। सुबह के 7:20 हुए हैं। लोकगीतों का कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दीदी, नौकरी लग गई।
4: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
3: हाँ दी, नया मोबाइल।
4: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
3: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
4: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
3: पर दीप,
4: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
3: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
4: अच्छा।
1: RBI कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: दादी, कौन सा प्लांट है?
8: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
9: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
7: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
9: क्यों?
7: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
9: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले, तेरी समझदारी का फल।
10: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
11: बदलो बदलो, आदत बदलो।
12: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
11: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है और अब प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सुनिए मनोरंजन ओझा की आवाज में भोजपुरी लोकगीत।

0: पोखरिया नदिया किनारे गोरी धारे।
1: लोकगीतों के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं मनोरंजन ओझा की आवाज में भोजपुरी लोकगीत।

लोकगीतों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत, कलाकार थे मनोरंजन ओझा, और इसी के साथ लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। पहली सभा के कार्यक्रमों को अभी आप सुन रहे हैं।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: दादी कौन सा प्लांट है?
7: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
8: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
6: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
8: क्यों?
6: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
8: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया, ये ले तेरी समझदारी का फल।
9: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
10: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

FM 102 दशमलव 4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। और अब प्रस्तुत है बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांचली। इसके अंतर्गत आज सुनिए अभिरूप गुहा ठाकुरता की आवाज में रविंद्र संगीत।

बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सरांचले के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं अभिरूप गुहा ठाकुरता की आवाज़ में रविंद्र संगीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और इस समय आप सुन रहे हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों को। और अब लीजिए सुनिए दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर तपन कुमार चटर्जी हमें बतला रहे हैं थैलीसीमिया लक्षण कारण और बचाव इस विषय पर, और उनसे बातचीत कर रहे हैं राजेश कुमार।
1: श्रोताओं, आज डॉक्टर तपन कुमार चटर्जी थैलेसीमिया के कारण और बचाव के बारे में हमें जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया होने का क्या मुख्य कारण होता है?
2: थैलेसीमिया कोई ऐसी नहीं है कि खान पान के कारण या इस ढंग से होता है। ये दरअसल पिताजी और माँ को अगर थैलेसीमिया ट्रेट है, थैलेसीमिया का अगर बीमारी से ग्रसित है, तो ऐसी जो पैदा होगा नया बच्चा उसको थैलेसीमिया होना जरूरी है और थैलेसीमिया होगा। तो थैलेसीमिया में खास करके जो बचाव करना चाहिए, चूंकि उसमें सीरम फेरेटिन ज्यादा रहता है, आयरन को बढ़ोतरी रहता है, इसलिए ऐसे कोई खाना नहीं दिया जाए जिसमें लोह का अंश ज्यादा है। जैसे अमरूद होगा, केला होगा, खजूर होगा, आयरन का जो गोली आमतौर से बांटा जाता है, इसको जो नहीं देना चाहिए गर्भवती महिलाओं को। सरकार की ओर से बहुत जगह पर दिया जाता है, लेकिन हम लोग इसको रोकथाम करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर माँ अगर थैलेसीमिक्स है तो उसको गर्भवती महिला उसको अगर फिर आयरन की गोली दिया जाएगा तो बढ़ जाएगा और वो मारक हो जाएगा।
1: तो कहने का मतलब है कि अगर कोई गर्भवती महिला है तो थैलेसीमिया की जांच भी उसका होना जरूरी है?
2: एकदम एकदम अवश्य। आपने बहुत सुंदर ये वाला बात इसलिए रखा क्योंकि आमतौर से लोगों में ये जानकारी नहीं है। तो जैसा आपके माध्यम से, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से, अगर श्रोताओं को ये चीज को जानकारी मिलता है कि हाँ थैलेसीमिया बीमारी को करना चाहिए, उसका रोकथाम करने के लिए हमको उसका जांच करना जरूरी है, तो वो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट कराएंगे रक्त का, उससे उनको पता चलेगा कि बच्चा या सोचे माँ बाबा कोई भी अगर पिताजी होगा तो उसको थैलेसीमिया है, ऐसे में उनको ये करना चाहिए। और इससे बचाव के लिए मैंने जैसे कहा कि शादी के पहले कानूनन जैसा जन्मपत्री मिलाया जाता है, ऐसा कानून बनाया जाए कि शादी के पहले वो थैलेसीमिया स्टेटस भी को भी बताएंगे।
1: अक्सर लोग ये सुनते हैं या फिर जानते हैं कि थैलेसीमिक पेशेंट जो होते हैं उन्हें एक अंतराल के बाद रक्त की जरूरत होती है और हमेशा उनमें रक्त चढ़ाया जाता है, ये क्या प्रोसेस है?
2: देखिए, रक्त का जो होना, माने ये थैलेसीमिया रोग जो है ना, ये ना कोई जाति, माने कोई रेस या सोचे कोई देश का या आर्थिक समस्या से जुझता हुआ कोई लोगों का नहीं है। यानी बहुत पैसे वाले का भी ऐसा हो सकता है, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर लोग का भी हो सकता है। तो इसीलिए जब भी ऐसा कोई भी थैलेसीमिक्स होगा तो उनको खून चढ़ाना जो है वो माने लाजमी है, जरूरी है। और थैलेसीमिया मेजर में पहले पहले 6 महीना में, फिर 3 महीना में, 2 महीना में, ये धीरे धीरे घट जाता है, क्योंकि जब भी लीवर स्प्लीन बढ़ेगा तो उसके खून का माने जरूरत भी ज्यादा पड़ता है। इसीलिए हम लोग सबसे अपील करते हैं कि थैलेसीमिक्स बच्चे लोग के लिए जरूर रक्त दिया जाए, दान कीजिए, ताकि एक बच्चा आपके इस रक्त से बच जाएंगे और नई जिंदगी की। मैंने लंदन में भी देखा था, वहाँ थैलेसीमिक्स माँ बाप माना जाता है, यानी उसको गोद लिया जाता है। अच्छा। और साल भर उसमें कोई रक्त का कमी नहीं होता है। हमारे देश में तो ऐसा नहीं होता, एक कॉन्सेप्ट की जरूरत है, एक विचार की जरूरत है।
1: तो रक्त अगर उसमें चढ़ाया जाए लगातार तो क्या उसके स्वास्थ्य जो है उसका सुधार आना शुरू हो जाता है उसमें?
2: नहीं, इसमें एक किंतु परंतु है, वो है कि होल ब्लड नहीं चलेगा उसमें, लेकिन उसमें पैक्ड सेल देना जरूरी है, क्योंकि अगर होल ब्लड दिया जाए तो NHFTR होता है, नॉन हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है, तो इसीलिए उसको

0: जो है वो पैक सेल दिया जाना चाहिए। पैक सेल अगर दिया जाएगा बराबर, तो ये संभावना है कि उसको जीवन भर उसको ठीक से, साथ में तो दवा तो चलेगा ही।
1: अंत में एक संदेश थैलेसीमिक से ग्रसित रोगियों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, ताकि थैलेसीमिया से जो ग्रसित लोग हैं उन्हें समाज में समान रूप से उन्हें देखा जाए, उनका सहयोग किया जाए।
0: थैलेसीमिया रोगियों के प्रति समाज के हर एक तबके के लोग को आगे आना चाहिए, उनको खून देना चाहिए, उनको और ज्यादा मानसिक रूप से उनको बूस्टअप करना चाहिए कि भाई थैलेसीमिक रोगी किसी तरह से पिछड़ापन में नहीं है, उनको आगे बढ़ने का बात करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आपने काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद।

या लक्षण, कारण और बचाव, इस विषय पर बतला रहे थे हमें डॉक्टर तपन कुमार चटर्जी और उनसे बातचीत कर रहे थे राजेश कुमार। और इसी के साथ दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा अब यहीं संपन्न हुआ।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर से बतला दें, हमारी इस सभा में सुबह 8:45 पर गांधी चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत आज की वार्ता का विषय है गांधी और नस्लवाद। वार्ताकार होंगी रमा तिवारी।

सुबह 9:05 पर फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना के अंतर्गत आज सुनेगा एक ही गायिका कविता कृष्णमूर्ति के गाए कुछ गीत।

सुबह 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के आज के कलाकार होंगे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। सुनिएगा बांसुरी वादन राग होगा बैरागी।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के ठीक 8 बजने वाली है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज, और ठीक 8:30 पर सुनिएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। कृपया कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 वैशाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन की चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर

0: स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को

0: गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमरीकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा, टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है, पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है, इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे, लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का ये बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है, तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है, कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
0: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग।

0: प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 50% आरक्षित पदों पर पारा शिक्षकों से आवेदन लेकर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का दिया निर्देश। दुमका गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन शुरू, झारखंड को मिलेगा 450 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का लाभ। संताल परगना समेत कई जिलों में बिजली आपूर्ति होगी मजबूत। झारखंड बिहार में आयकर विभाग ने 20,000 करोड़ रुपए का कर किया संग्रह। महेंद्र सिंह धोनी बने सबसे बड़े व्यक्तिगत आयकर दाता। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली करेगा लागू। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के दिए निर्देश। और रांची में कल से आयोजित होगी 12वीं जिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता, 600 से अधिक खिलाड़ी लेंगे भाग। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड के पारा शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार को सहायक शिक्षक और सहायक आचार्य के 50 अतिरिक्त आरक्षित पदों पर केवल पारा शिक्षकों से आवेदन लेकर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार को 10 सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने तथा हर शैक्षणिक सत्र में आरक्षित पदों पर नियमित भर्ती प्रक्रिया चलाने का आदेश दिया है। साथ ही रिक्तियों की पहचान, विज्ञापन जारी करने और नियुक्ति पत्र देने के लिए भी समय सीमा तय की गई है। झारखंड को बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में बड़ी राहत मिली है। दुमका गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन के एक सर्किट का चार्जिंग कार्य सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद अब JUSNL लगभग 450 मेगावाट तक बिजली प्राप्त कर सकेगा। इस परियोजना से दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, देवघर, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो सहित कई जिलों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी और लोड शेडिंग से राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार झारखंड के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त डी सुधाकर राव ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में आयकर विभाग ने निर्धारित 18,500 करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार करते हुए 20,000 करोड़ रुपए का कर संग्रह किया है। इसमें झारखंड से 12,000 करोड़ और बिहार से 8,000 करोड़ रुपए का योगदान शामिल है। महेंद्र सिंह धोनी बिहार झारखंड के व्यक्तिगत करदाताओं में सबसे बड़े आयकरदाता बने हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में आज समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
1: यह आरक्षण प्रणाली वर्ष 1986 में शुरू की गई और पिछले 40 वर्षों में इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इसकी क्षमता का व्यापक विस्तार किया गया है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है। इस पर वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: झारखंड विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने देवघर में विभिन्न विभागों की योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क और पुनासी परियोजना समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस मौके पर हेमलाल मुर्मू ने कहा कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा किया जाए।
2: सभी विभागों को बहुत ही गहनता के साथ हम लोगों ने समीक्षा किया है और जो डायरेक्शन देना था उचित, जो जनहित के लिए, वो डायरेक्शन हम लोग दे दिए हैं और उसको टाइम टेबल वगैरह फिक्स किया है। इतना दिन के अंदर उसको पूरा कर लेना है, यही आज की मीटिंग है।
0: रांची नगर निगम के महापौर रोशनी खलखो ने जनगणना 2027 के तहत मोबाइल फोन के माध्यम से स्वयं और अपने परिवार की स्वगणना की। उन्होंने बताया कि जनगणना का पहला चरण 1 से 15 मई तक चलेगा, जिसमें नागरिक वेबसाइट सेंसस सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल पर अपनी जानकारी अपलोड कर यूनिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया।

0: रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जामताड़ा जिले में रजिया नदी पर सौर्य ऊर्जा संचालित उद्धव सिंचाई परियोजना का शिलान्यास मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने किया। इस योजना के तहत नदी का पानी लिफ्ट कर सैकड़ों एकड़ भूमि तक पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि यह परियोजना किसानों के लिए वरदान साबित होगी और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी।
1: आदिवासियों का जो गांव मंडल का जो गांव है, यादव का जो गांव है, वो नदी से ऊपर है और यहाँ पर अगर आप लिफ्ट इरिगेशन दे देते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ के किसानों को लाभ मिलेगा, आदिवासियों को लाभ मिलेगा। ये रजिया नदी पर सिंधवा जो पंचायत है, हमारा गांव है, तैनी पंचायत में हमने बहुत बड़ा लिफ्ट इरिगेशन दिया है। यहाँ के लोग अब नदी से पानी उठाएंगे और अपने खेतों तक पहुँचाएंगे।
0: रांची यातायात पुलिस ने शहर में बिना वैध दस्तावेज और क्षमता से अधिक सवारी बैठाकर चलने वाले बस, ऑटो और टोटो वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। चलाए गए अभियान के दौरान कुल 111 वाहनों पर कार्रवाई की गई। इनमें 3 बस, 103 ऑटो और 5 टोटो वाहन शामिल हैं। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों और मालिकों से वैध कागजात रखने तथा निर्धारित क्षमता के अनुसार ही सवारी बैठाकर वाहन चलाने की अपील की है। झारखंड में अपराधियों से निपटने के लिए पुलिस को हाई स्पीड बाइक दी जा रही है। इस कड़ी में हजारीबाग पुलिस को 42 नई बाइक मिली है, जिन्हें पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि ये बाइक संकीर्ण गलियों और मोहल्लों में तेज पेट्रोलिंग तथा अपराधियों का पीछा करने में मददगार साबित होगी।
2: झारखंड सरकार के द्वारा पेट्रोलिंग के लिए बाइक्स दिए गए थे, 42 बाइक नए आए थे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन और पुराने बाइक्स का भी रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जिसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं शहर के थानों को और जहां पे अर्बन पॉपुलेशन या पॉपुलेशन बहुत घना है वहां के थानों को, ताकि वहां पर पेट्रोलिंग हम लोग बाइक से भी कर सके। स्पॉट्स को हम लोग कवर करें जहां अड्डेबाजी होती है, जहां परेशानी होती है, जहां आम नागरिक ज्यादा डेंसिटी में रहते हैं, वहां पर बाइक्स की पेट्रोलिंग हम लोग करें।
0: रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने जांच अभियान के दौरान 13 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। आरपीएफ के अनुसार सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब्त मादक पदार्थ को आगे की कार्रवाई के लिए जीआरपी रांची को सौंप दिया गया। मौसम। झारखंड में चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से आज से 13 मई तक मौसम में उतार चढ़ाव बना रहेगा। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज हवा, बारिश और वज्रपात की आशंका को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रांची समेत कई जिलों में 9 और 10 मई को 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बारिश होने की संभावना जताई गई है। ताइक्वांडो। रांची में कल से 12वीं रांची जिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। रांची जिला ताइक्वांडो संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले भर से करीब 600 खिलाड़ी, कोच, मैनेजर और रेफरी विभिन्न स्कूल, कॉलेजों और क्लबों की ओर से भाग लेंगे। प्रतियोगिता के पहले दिन सब जूनियर और जूनियर वर्ग, जबकि दूसरे दिन कैडेट और सीनियर वर्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। चयनित खिलाड़ी वर्ष भर जिला टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने बिहार में हुए 32 मंत्रियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की खबरों को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर लिखता है, पश्चिम बंगाल में आज होगी मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा, शपथ ग्रहण कार्यक्रम कल। प्रभात खबर की सुर्खी है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, तैराकी प्रतिभाओं को उपलब्ध कराई जाएगी अत्याधुनिक सुविधा। हिंदुस्तान ने लिखा है, ऑपरेशन सिंदूर पर पाक के खिलाफ अभियान पर सेनाओं ने किया खुलासा, 100 आतंकी मारे गए। दैनिक जागरण की सुर्खी है, दूसरे राज्यों के चिकित्सकों को झारखंड में निबंधन से मिलेगी छूट। और अंत में मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 50% आरक्षित पदों पर पारा शिक्षकों से आवेदन लेकर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का दिया निर्देश। दुमका गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन शुरू, झारखंड को मिलेगा 450 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का लाभ। संथाल परगना समेत कई जिलों में बिजली आपूर्ति होगी मजबूत। झारखंड बिहार में आयकर विभाग ने 20,000 करोड़ रुपए का कर किया संग्रह, महेंद्र सिंह धोनी बने सबसे बड़े व्यक्तिगत आयकर दाता। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण

पोषण प्रणाली करेगा लागू। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के दिए निर्देश। और रांची में कल से आयोजित होगी 12वीं जिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता, 600 से अधिक खिलाड़ी लेंगे भाग। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

हर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार और कुछ महत्वपूर्ण संदेश अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 8:45 हुए हैं और अब प्रस्तुत है महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: शुदा महात्मा गांधी और टैगोर के बीच गहरा पारस्परिक सम्मान और अटूट मित्रता थी, लेकिन उनके वैचारिक दृष्टिकोण में स्पष्ट भिन्नता थी। जहां गांधी सत्य, अहिंसा और व्यवहारिक राष्ट्रवाद पर जोर देते थे, वहीं टैगोर प्रेम, अंतर्राष्ट्रीयता और मानवतावाद के समर्थक थे। मतभेदों के बावजूद दोनों के बीच बौद्धिक संवाद और प्रेमपूर्ण बहसें होती थी। टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी, जबकि गांधी जी ने टैगोर को गुरुदेव कहकर सम्मानित किया। गांधी का राष्ट्रवाद आत्मनिर्भरता पर आधारित था, जबकि टैगोर संकीर्ण राष्ट्रवाद के आलोचक थे और विश्व बंधुत्व में विश्वास करते थे। टैगोर शिक्षा में स्वतंत्रता और कलात्मकता के समर्थक थे, जबकि गांधी जी का दृष्टिकोण व्यवहारिक और भारतीय संस्कृति पर केंद्रित था। दोनों अलग अलग विचारधाराओं के बावजूद एक दूसरे के प्रति अत्यधिक प्रेम और सम्मान रखते थे। कह सकते हैं कि गांधी और टैगोर भारत के दो महान विचारक थे, जो एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के विचारों को पूरक और समृद्ध बनाने वाले थे। श्रोताओं, आज की गांधी चर्चा में आइए सुनते हैं रमा तिवारी की वार्ता गांधी और नस्लवाद।
1: महात्मा गांधी अंधकार को भगाने वाले प्रकाश थे। ऐसे महापुरुष प्रत्येक युग के देन नहीं वरन कभी कभी इस धराधाम पर अवतीर्ण होते हैं, और जब वे आते हैं तब एक नया आलोक फैल जाता है, जीवन उत्साहित हो उठता है और जीवन की राह बदल जाती है। ऐसा ही कुछ महात्मा गांधी की मौजूदगी में दक्षिण अफ्रीका में नजर आया। महात्मा गांधी का नस्लवाद के विरुद्ध आंदोलन में बहुत बड़ा हाथ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका तो गए थे वकालत करने, लेकिन भविष्य के गर्भ में कुछ और ही छिपा था। गांधी जी का गोरों के रंगभेद नीतियों के खिलाफ ये उनका पहला आंदोलन था जिसे दक्षिण अफ्रीका की जनता का पूर्ण समर्थन मिला। कवि दिनकर के शब्दों में, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान, और यहीं से गांधी जी को बापू के रूप में नई पहचान मिली। अफ्रीका का प्रयास गांधी जी के जीवन का स्वर्णिम युग है। पगड़ी बिना उतारे कचहरी जाने का आदेश नहीं मिला, पास में टिकट था पर फर्स्ट क्लास में यात्रा करने पर रोक थी, केवल इसलिए कि वे गौरांग महाप्रभु थे। गोरे लोगों ने होटल, रेल, सड़क पर अपना अधिकार जमा लिया था। वे काले लोगों को कूली जाति कहकर संबोधित करते थे और उन पर नाना प्रकार के अत्याचार करते थे। गांधी जी ने देखा कि भारतीय असहाय हैं और किसी प्रकार जी रहे हैं। वहां भारतीयों की संख्या अधिक थी पर सभी डरे डरे रहते थे और सभी तरह के अत्याचारों को सहते हुए जीवन नौका किसी तरह आगे बढ़ा रहे थे। गांधी जी उनकी दशा देख जहर का घूंट पी कर रह गए और तय कर लिया कि चाहे परिणाम जो हो पर सबको समान अधिकार दिलाकर ही दम लेंगे। ऐसा विचार उनके मन में इसलिए आया क्योंकि उन दिनों अफ्रीका में रंगभेद नीति का बोलबाला था। गोरे लोग काले अफ्रीकियों और एशियाई मूल के निवासियों से बुरा बर्ताव करते थे। गांधी जी सोचते रहे और निर्णय लिया कि मैं रंगभेद नीति के विरुद्ध लड़ूंगा। उनका कहना था कि वे हमें तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, इन अपमानों के आगे झुकना घोर पतन है। बस अब क्या था, गांधी जी ने सत्याग्रह को अपना हथियार बनाया और वहाँ अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध मोर्चे भी लगाए। इस प्रकार इस महामानव के जीवन रूपी पुस्तक का एक दूसरा अध्याय शुरू हुआ। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भी भारतीयों पर होने वाले भेदभाव का सामना करना पड़ा। आरंभ से उन्हें प्रथम श्रेणी कोच की वैध टिकट होने के बाद तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के लिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था।

अन्याय के प्रति जागरूकता का कारण बनी तथा सामाजिक सक्रियता की व्याख्या करने में मददगार सिद्ध हुई। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए गांधी जी ने अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत अपने देशवासियों के सम्मान तथा देश में स्वयं अपनी स्थिति के लिए भी प्रश्न उठाए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर एक मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। सेठ अब्दुल्ला के बुलाने पर गांधी जी पानी के जहाज पर सवार होकर दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे। यहां से 7 जून 1893 को उन्होंने प्रिटोरिया जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन जब ट्रेन पीटर मारिट्सबर्ग पहुंचने वाली थी तो उन्हें थर्ड क्लास वाले डिब्बे में जाने के लिए कहा गया, लेकिन गांधी जी ने इससे इनकार कर दिया तो उन्हें जबरदस्ती पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से धक्का देकर उतार दिया। गांधी जी के साथ हुई इसी घटना ने सत्याग्रह को जन्म दिया। सत्याग्रह यानी अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ना। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में विशुद्ध रूप से अपने कार्य के सिलसिले में गए थे। वे एक व्यापारिक संस्थान के कानूनी सलाहकार के रूप में वहां पहुंचे। उन दिनों दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति बहुत ही बुरी थी और उनके साथ अत्यधिक दुर्व्यवहार किया जाता था। उन्हें वहां असभ्य और जंगली समझा जाता था और श्वेत राजनीतिज्ञ उनसे घृणा करते थे। वे स्वयं भारतवासियों को अफ्रीका से निकालना चाहते थे। जब वहां महात्मा गांधी के साथ दुर्व्यवहार किया गया तब उन्हें रंगभेद नीति का व्यक्तिगत अनुभव हुआ। महात्मा गांधी ने उस दिन से दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार के दमन एवं भेदभाव का विरोध प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपने चारों तरफ अच्छी तरह देखा भाला, फिर प्रवासी भारतीयों को एकत्रित कर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया। उस समय एशिया वासियों के विरुद्ध कानून बनाए जाते थे। रंगभेद नीति संबंधी कानून कठोर से कठोरतम होते चले गए और कठोरतम कानून एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट पारित हुआ। इस समय दी ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की सदस्यता काफी बड़ी थी, किंतु महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि संघर्ष में उसे प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाए। इसलिए उन्होंने एक नई संस्था बनाई, पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन। वे जानते थे कि यह संघर्ष दीर्घकालीन होगा, इसलिए उन्होंने कहा, मैं साहसपूर्वक एवं निश्चयपूर्वक यह घोषणा कर सकता हूँ कि जब तक अपनी प्रतिज्ञा के प्रति अडिग मुट्ठी भर सच्चे लोग होंगे, इस संघर्ष का केवल एक अंत हो सकता है और वह होगी विजय। महात्मा गांधी ने इस संघर्ष में अपने देशवासियों का नेतृत्व किया और जेल भी गए। इस समय जनरल स्मर्ट्स ने एक चालाकी की। उन्होंने वादा किया कि यदि भारतवासी स्वयं में अपना नामांकन करते हैं तो वे इस कानून को समाप्त कर देंगे। गांधी जी एवं अन्य भारतवासियों द्वारा स्वेच्छा से नामांकन किए जाने के बाद भी उसने उस कानून को समाप्त नहीं किया। सत्याग्रह पुनः छेड़ा जाना अवश्यंभावी हो गया। 16 सितंबर 1908 को जोहान्सबर्ग में प्रतिनिधियों की एक सभा बुलाई गई एवं उस सभा में उन सर्टिफिकेट्स को जलाने की योजना बनाई गई जिन्हें भारतवासियों ने स्वेच्छा से नामांकन के लिए दाखिल किया था। 2000 सर्टिफिकेट्स उस दिन आग में डाल दिए गए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाया। नेशनल इंडियन कांग्रेस की नींव पड़ी। उन्होंने ललकार कर कहा कि वही दोषी नहीं है जो अपमान करता है, पर उससे बढ़कर तो वह दोषी है जो अपमान को सहता है। आत्मसम्मान की रक्षा करना सबका समान धर्म है, पर आत्मसम्मान के लिए दूसरों पर अत्याचार करना बुरा है। गांधी जी की यह ललकार बिजली की भांति चारों ओर दौड़ गई। सभी भारतीय अपने अधिकारों एवं आत्मसम्मान के लिए संगठित होकर लड़ने लगे। गोरों के कान खुले और ये अपना अत्याचार और बढ़ाने लगे ताकि ये बढ़ता हुआ तूफान दब जाए। गांधी जी ने वहाँ एक बड़ा जुलूस निकाला। उसमें दक्षिण अफ्रीका के प्रताड़ित सभी भारतीयों ने भाग लिया। यह प्रथम प्रयोग सत्याग्रह का था। ऐसा उन्होंने उनकी दशा सुधारने के लिए किया और भारतीयों को उनके अधिकारों

0: बोध कराया। उन्होंने उनमें जागृति लाकर उन्हें संगठित किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए जिस कांग्रेस की स्थापना की, आज भी वह वहां की प्रमुख पार्टी है। गांधी जी और उनके साथियों को कैद करके सजाएं दी गई, लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी। उनके अहिंसक विरोध की वहनी अविराम धधकती रही। गांधी जी के आंदोलन से गोरे और उनकी नीतियां हिलने लगी। दुष्यंत जी के शब्दों में, अब ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये नींव हिलनी चाहिए। और अंग्रेजों की नींव हिलाने के लिए गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका को अपना पहला केंद्र बनाया। अंत में जनरल स्मट्स को संधि करनी पड़ी और भारतीयों को उनका समुचित अधिकार मिला। इस तरह गांधी जी पीड़ित और दलित मानवता के तेजस्वी प्रतिनिधि मान लिए गए। बापू ने त्याग, सेवा और निस्वार्थ समर्पण की जो दीपशिखा प्रज्वलित की, वह सदियों तक उत्पीड़ित मानवता को ज्योति दिखाकर मुक्ति का मंत्र बतलाती रहेगी। रंगभेद नीति के खिलाफ गांधी जी ने जिस लड़ाई की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में की, उसकी अगली कड़ी को उठाने की जिम्मेवारी मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में और नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में थामी और अंततः रंगभेद नीति समाप्त हुई। पर आज भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अंशतः ये नजर आता।
1: गांधी और नस्लवाद। अभी आप सुन रहे थे रमा तिवारी की वार्ता और इसके साथ ही आज की गांधी चर्चा यहीं संपन्न होती है। इस अंक के प्रस्तुतकर्ता थे राजेश कुमार राय। तो फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए शिखा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के ठीक 9 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित

0: जिन बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दास गुप्ता, कोलकाता।
1: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथैगल काची वीसीके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉ एमजे खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी और निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुस जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू हुई तथा कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन से होती हुई आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने मैराथन में भाग लिया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन भी इस अवसर पर उपस्थित थे। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:05 हुए हैं। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना हम आपको सुनवाएंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
6: ब्रो ये फटा है।
7: सुन, कटे फटे या पुराने नोट को
8: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
6: वाओ, नया नोट मिलेगा?
7: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
8: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
9: कूल रहो।
10: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
4: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
11: पापा, लाइए 3,000।
12: क्यों भाई?
11: मेरी पॉकेट मनी।
12: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
11: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
12: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
11: अपना मोबाइल लाओ,
12: ले ले।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
13: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
14: जलवायु और शिक्षा, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन से निपटने में शिक्षा एक जरूरी किरदार निभाती है। यह लोगों को जागरूक बनाती है और सस्ता संवेदनशील जीवन जीने का तरीका सिखाती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन खुद भी शिक्षा को प्रभावित कर सकता है। तूफान, बाढ़ या अन्य बुरे मौसम के कारण स्कूल बंद हो जाते हैं और कई बार बच्चों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, जिस वजह से उनकी पढ़ाई रुक जाती है। गरीबी और बढ़ती है और कई बार बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते। इसलिए शिक्षा प्रणालियों को मजबूत बनाना जरूरी है ताकि हम क्लाइमेट के असर का सामना कर सके। क्या आप जानते हैं 2019 में दुनिया भर के सिर्फ 53% युवाओं ने सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी।

आकाशवाणी जमशेदपुर से प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सरंजना। सरंजना कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में बात एक मशहूर भारतीय पार्श्व और शास्त्रीय गायिका की, जिन्होंने महज 8 साल की उम्र में एक गायन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था और 9 साल की उम्र में मशहूर गायिका लता मंगेशकर के साथ अपना पहला बांग्ला गाना गाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध गायिका कविता कृष्णमूर्ति की, जिन्होंने फिल्म जगत के लिए 15,000 से भी अधिक गाने गाए हैं। आज कार्यक्रम सुरंजना में हम आपको सुनवा रहे हैं उन्हीं की आवाज में कुछ खूबसूरत गीत।

श्रोता, पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति का जन्म दिल्ली के एक तमिल परिवार में हुआ था। बचपन में उनका नाम श्रद्धा कृष्णमूर्ति था, लेकिन बाद में उन्हें कविता कृष्णमूर्ति के नाम से जाना जाने लगा। पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति ने हिंदी, बांग्ला, कन्नड़ के अलावे कई भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए हैं। उनकी बेहतरीन गायकी के कारण साल 1995-97 के दौरान लगातार 4 बार फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया है, और साथ ही साल 2005 में पद्मश्री भी उन्होंने प्राप्त किया, और साल 2015 में बेंगलोर स्थित जैन विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय संगीत में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की डिग्री से भी सम्मानित किया गया।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सरंजना में आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही गायिका कविता कृष्णमूर्ति के गाए गीत। और अब इस कार्यक्रम के लिए हम ले रहे हैं छोटा सा अंतराल, अभी हाजिर होते हैं।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
4: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
3: अरे वही अपना 60 रुपया।
4: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
3: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
4: और दूसरा?
3: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
4: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
3: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
6: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
8: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम सुरंजना में। श्रोताओं, साल 1987 में एक सुपरहिट फिल्म आई थी मिस्टर इंडिया, जिसका एक गाना पार्श्वगायिका कविता कृष्णमूर्ति के करियर का सुपरहिट गाना रहा, जिसे संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कंपोज किया था और ये गीत फिल्माया गया था अभिनेत्री श्रीदेवी पर। आइए उस फिल्म का गीत हम अब सुनते हैं।

आज के सरंजना कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको बता दें, जिन फिल्मों के गीतों को आज के कार्यक्रम में आपने सुना वे थी मिस्टर इंडिया, 1942 अ लव स्टोरी और कोयला। गीत लिखा जावेद अख्तर और इंदिवर ने, संगीत तैयार किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन और राजेश रोशन ने। और श्रोता, हम आपको बता दें आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे एक ही गायिका कविता कृष्णमूर्ति के गाए गीत। और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के ठीक 9:30 हुए हैं और आप इस समय हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
2: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
2: चलो
1: कहाँ
2: एडमिशन कराने,
4: खाता हुआ एक्टिव।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: बोल बोल के थक गया।
3: क्या हुआ?
2: नया किडबैग चाहिए।
3: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग।
4: RBI कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

आकाशवाणी जमशेदपुर से आप प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन राग है बैरागी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन राग था बैरागी, और इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और ठीक 10:10 पर सुनिएगा विश्व दर्पण समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन होगा। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
1: वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आज होनी है। वहीं केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर अपने निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष एमजे खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी बातचीत की गई। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। वे मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू हुई तथा कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन से होती हुई आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रॉयल सीमा में आज गरज के साथ बारिश तथा तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी The news read by Subhadra Ramachandran. Union Home Minister Amit Shah will arrive in Kolkata today. He is scheduled to attend a meeting with the newly elected BJP MLAs, during which the party's legislative leader will be selected. The first BJP government in West Bengal will take oath tomorrow, the 25th of Boishakh, at the Brigade Parade Ground. According to BJP sources, Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Nitin Gadkari, JP Nadda, BJP President Nitin Naveen and several other central leaders may attend the ceremony. Chief Ministers and Deputy Chief Ministers of various BJP and NDA ruled states are also being invited. In Tamil Nadu, with the formation of the new government getting delayed, political situation in the state, talks are being held to reach the magic number of 118 to prove majority. The DMK and the AIADMK had held the legislative party meetings of the newly elected MLAs yesterday. AIADMK General Secretary Edappadi Palaniswamy has been elected as the leader of the legislative party meeting at Puducherry. The crucial meeting of the newly elected MLAs of VCK, CPI and CPIM is to take place today on the issue of lending support to the single largest party. President of Vietnam

0: अमेरिका ने कहा है कि वो युद्ध आगे बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन हर हाल में अपनी सेना की रक्षा के लिए तैयार है। वहीं ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि अमेरिका ने टकराव की शुरुआत की और ईरानी सेना ने केवल इसका जवाब दिया। अमेरिका और इसके अरब सहयोगियों के बीच तनाव के बाद ये हमला हुआ है। खबर है कि सऊदी अरब ने जबरन जल डमरो मध्य मार्ग खुलवाने के अमेरिकी प्रयास में सहयोग करने से इनकार कर दिया है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: उधर सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना प्रोजेक्ट फ्रीडम छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए कोई स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमरीकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्क लगाए जाने की घोषणा की थी। अमरीकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लगाने का फैसला किया था। अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि 1-2 मत से इस टैरिफ को अवैध बताया। ये फैसला ट्रंप प्रशासन के लिए एक और कानूनी झटका है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रीम अल हाशिमी के साथ अबुधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। इस वर्ष जनवरी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और फरवरी में अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत यात्रा के दौरान लिए गए निर्णयों पर प्रगति का भी जायजा लिया गया। श्री मिश्री ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबू धाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में संविधान परिषद ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा के नाम की सिफारिश की है। डॉक्टर शर्मा न्याय परिषद द्वारा भेजे गए 6 उम्मीदवारों में वरिष्ठता क्रम में 4th स्थान पर हैं। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने की। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
4: नेपाल में पहले आमतौर पर मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश वरिष्ठता के आधार पर होती थी, लेकिन इस बार वरिष्ठता क्रम को छोड़कर डॉक्टर शर्मा का नाम आगे बढ़ाया गया है। नेपाल के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कम से कम 3 वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुका हो वह मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। इस पद के लिए योग्य न्यायाधीशों में सपना प्रधान मल्ला, कुमार रेग्मी, हरि प्रसाद फुयाल, डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, डॉक्टर नाहकुल सुबेदी और तिल प्रसाद श्रेष्ठ शामिल थे। न्यायिक परिषद द्वारा अनुशंसित सभी 6 व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश बनने के योग्य हैं और संविधान किसी की भी नियुक्ति पर रोक नहीं लगाता है। मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और आयु सीमा 65 वर्ष है। काठमांडू से श्वेता सिंह की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए मैं पायल शर्मा।
1: रूस ने यूक्रेन के साथ जारी युद्ध में आज से 10 मई तक संघर्ष विराम की घोषणा की है। ये घोषणा द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ की विजय की 81वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में की गई है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की ने एक सम्मेलन में कहा था कि रूस 9 मई के विजय दिवस परेड के दौरान मॉस्को के रेड स्क्वायर पर संभावित ड्रोन हमलों के डर से युद्ध रोक सकता है। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लैम कल रात 2 दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। एक रिपोर्ट।
2: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम की इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और व्यापार तथा निवेश सहयोग को बढ़ाना है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर हो रही है। ये पिछले 15 वर्षो में किसी वियतनामी राष्ट्रपति की पहली श्रीलंका यात्रा है। राष्ट्रपति तो लैम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, संसद को संबोधित करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। इससे पहले राष्ट्रपति तो लैम ने अपनी भारत यात्रा के दौरान मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए कहा कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास महत्वपूर्ण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। श्री लैम ने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया।
1: बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। कल खसरे के संक्रमण से 12 और बच्चों की मौत हो गई। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार 6 बच्चों की मौत ढाका में और शेष की बारिसाल, खुलना, मेमन सिंह, राजशाही और सिलहट में हुई। महानिदेशालय ने बताया कि इनमें से 1 बच्चे में खसरे की पुष्टि हुई जबकि 11 बच्चों में खसरे जैसे लक्षण पाए गए। देश भर में 1238 बच्चों में खसरा जैसे संक्रमण के लक्षण हैं। 15 मार्च के बाद से बांग्लादेश में 57 लोगों की मौत खसरे से और 279 लोगों की मौत खसरा जैसे संक्रमण से हुई है। देश में परीक्षण किट की कमी से ये संकट और गहरा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि क्रूज जहाज पर फैले हंता वायरस संक्रमण के 5 मामलों की पुष्टि हुई है जबकि 3 अन्य मामलों में संक्रमण का संदेह है। WHO के अनुसार स्थिति गंभीर जरूर है लेकिन फिलहाल आम लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है। ये संक्रमण क्रूज जहाज MV होंडियस से जुड़ा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट 3 अमेरिकी जहाजों पर ईरान के हमले के बाद उसे जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगाई। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने अबुधाबी में भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। बांग्लादेश में खसरे के प्रकोप से 12 और बच्चों की मौत। और नेपाल की संवैधानिक परिषद ने डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए नामित किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने

0: इससे पहले
1: चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।

आकाशवाणी जमशेदपुर से प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, विश्व का प्रत्येक धर्म मानव सेवा का पक्षधर है। सेवा परमो धर्मा, यही तो हम सबका मूल मंत्र भी है। और इसी भावना से प्रेरित होकर स्विट्जरलैंड के निवासी जॉन हेनरी ने रेड क्रॉस नामक एक संस्था की स्थापना की थी। आज के समय में रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मानवता के आधार पर लोगों की सहायता कर रही है, साथ ही युद्ध एवं प्राकृतिक आपदाओं के समय पीड़ित लोगों की समुचित सेवा करती है। रेड क्रॉस का मूल मंत्र है। रेड क्रॉस अभियान को जन्म देने वाले जॉन हेनरी का जन्म आज ही के दिन 8 मई 1828 को स्विट्जरलैंड में हुआ था और उन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर उनके महान कार्य को देखते हुए आज के दिन को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है।

0: चिड़िया खाना फिल्म का ये गाना था राजीव सुंदर सेन और परोमा दास गुप्ता की आवाज़ों में। अनिल पांडे थे गीतकार और संगीतकार थे विवेक राजगोपालन।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
5: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
4: बिना नंबर जांचे

0: जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें। तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र, और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। और अब कार्यक्रम का अगला गाना श्रेया घोषाल और तोशी रैना की आवाज़ों में हम आपको सुनवा रहे हैं। समीर ने गीत लिखा है और धुन बनाई है सचिन जिगर ने, और फिल्म का नाम है शोर इन द सिटी।

0: दिल फिल्म का ये गाना था उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में। समीर ने गीत लिखा और धुन बनाई आनंद मिलिंद ने।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
6: ब्रो, ये फटा है।
7: सुन, कटे फटे या पुराने नोट को
8: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
6: वाओ, नया नोट मिलेगा?
7: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
8: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
9: वर्क फ्रॉम होम, हाय सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
10: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
11: बदलो बदलो, आदत बदलो।
12: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
11: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
13: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें। तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से

0: बुलेट राजा फिल्म का ये गाना था श्रेया घोषाल, वाजिद और बॉनी चक्रवर्ती की आवाज़ों में। कौसर मुनीर ने गीत लिखा और धुन बनाई साजिद वाजिद ने।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: एक लाख दो।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे
1: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
0: तो लेन देन
1: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
0: ओ,
1: जैसे UPI से।
0: अच्छा,
1: हाँ। और सुनो, एक और नियम है।
0: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
0: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: बदलो बदलो, आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हमारा डेजर्ट आ गया, पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
7: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
8: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
9: बिल हो रहा है।
10: चल अपना कार्ड दे,
8: पिन दे।
11: RBI कहता है, अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: विवाह फिल्म का ये गाना था उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ में, गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। और इसी के साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, ओ जैसे UPI से।
2: अच्छा
1: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: आम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
1: हर लेन देन अब है आसान।
4: हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आप सुनेंगे इसी चैनल पर।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय दिन के ठीक 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। कृपया कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्त, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म से संबंधित धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों पर गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। निदेशालय ने बताया कि पीड़ितों द्वारा की गई आत्महत्या से संबंधित कई FIR कंपनी के खिलाफ दर्ज है। निदेशालय ने कल कर्नाटक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में करीब 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं और कंपनी के 3 संस्थापकों को गिरफ्तार किया गया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबू धाबी में बैठक की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। कल खसरे के संक्रमण से 12 और बच्चों की मौत हो गई। 15 मार्च के बाद से बांग्लादेश में 57 लोगों की मौत खसरे से और 279 लोगों की मौत खसरा जैसे संक्रमण से हुई है। देश में परीक्षण किट की कमी से यह संकट और गहरा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई को 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने मैराथन में हिस्सा लिया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन भी इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री गौरव द्विवेदी ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि आकाशवाणी हमेशा से लोगों की दिल की धड़कन रहा है।
2: आकाशवाणी भारत की धड़कन था।
0: IPL क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। दिन के 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम के आगाज में हम आपसे करेंगे थोड़ी बातचीत और फिर सुनवाएंगे कुछ सुरीले नगमे। तो हमारे साथ बने रहें और सुनते रहें कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

मित्रों, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज है विश्व रेड क्रॉस दिवस, जिसे प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। आज हेनरी डोनेंट की जयंती भी है। इनका जन्म 8 मई 1928 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। वे अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ICRC के संस्थापक थे और 1901 में प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार भी उन्हें मिला था। आज का ये दिन मानवता, करुणा और सेवा की भावना को उजागर करता है। रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है मित्रों, जो आपदा, युद्ध, महामारी या किसी भी प्रकार की संकट की स्थिति में पीड़ितों की मदद करती है। हेनरी डोनेंट द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन आज लाखों लोगों को संकट की घड़ी में सहायता प्रदान कर रहा है। भारत की बात करें तो भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में की गई थी। ये आपात स्थितियों के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। मित्रों, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2026 की थीम की अगर हम बात करें तो 2026 की थीम है मानवता को जीवित रखना। ये दिन उन लाखों स्वयंसेवकों को समर्पित है जो निस्वार्थ भाव से जीवन बचाने का काम करते हैं। आज के दिन हम सभी उनकी सहायता, साहस और निस्वार्थता के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य है बिना किसी डर या भेदभाव के जरूरतमंद लोगों की सहायता करना। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आपकी छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? एक यूनिट ब्लड किसी की सांसें बचा सकती है। तो आज विश्व रेड क्रॉस दिवस पर किसी एक इंसान की मदद जरूर करें, क्योंकि इंसानियत का होना बहुत जरूरी है। मदद कीजिए क्योंकि कोई देख रहा है, नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि किसी को आपकी बहुत जरूरत है।

इंसान का इंसान से हो भाईचारा। पैगाम फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। मन्ना डे की आवाज़ में, शब्द रचना थी प्रदीप गिरी।

दोस्तों, उम्मीद और हौसले से ही दुनिया बदलती है। और अब हम साथ चलते हैं। जब हम एक दूसरे के साथ चलते हैं ना मित्रों, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। हर सांस एक मौका है किसी की मदद करने का। तो आइए जिंदगी को दिल से जीते हैं और सुनते हैं ये गीत।

फिल्म डियर जिंदगी का ये गीत अभी आपने सुना, अमित त्रिवेदी और आशीष कौर की आवाज़ें थी, शब्द रचना थी कौसर मुनीर की और तर्ज बनाई थी अमित त्रिवेदी ने।

दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे विश्व रेड क्रॉस दिवस की, जो 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई का ये दिन इंसानियत की सबसे खूबसूरत मिसाल है, क्योंकि आज विश्व थैलेसीमिया दिवस भी है। रेड क्रॉस यानी सेवा, समर्पण और मानवता का प्रतीक। और थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी जिसमें मरीजों को बार बार खून की ज़रूरत होती है। रक्तदान यही वो कड़ी है जो इन दोनों दिनों को जोड़ती है। रक्तदान, जीवन दान, रेड क्रॉस दिवस से हमें सीख मिलती है कि हमें हर किसी की मदद करना चाहिए। और थैलेसीमिया दिवस हमें याद दिलाता है कि आपका एक यूनिट खून किसी के जिंदगी में जान डाल सकता है। थैलेसीमिया दिवस पर आइए जानते हैं आखिर थैलेसीमिया है क्या। मित्रों, थैलेसीमिया एक अस्थायी रक्त विकार है। ये एक अनुवांशिक विकार है जिसके कारण रोगी के लाल रक्त कणों में पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। इसके कारण एनीमिया हो जाता है और रोगियों को जीवित रहने के लिए हर 2 से 3 सप्ताह बाद रक्त चढ़ाने की ज़रूरत होती है। इसके लक्षण की बात करें तो थैलेसीमिया के लक्षण पूरी तरह से गंभीरता पर निर्भर करते हैं। शिशुओं और छोटे बच्चों में परिवार द्वारा देखे जाने वाले सामान्य लक्षण में त्वचा, पलकों के अंदरूनी हिस्से और होठों का असामान्य रूप से पीला पड़ जाना, लगातार थकान महसूस होना, लीवर के आकार का बढ़ना, त्वचा या आंखों में पीलापन दिखाई देना। थैलेसीमिया माइनर से पीड़ित वयस्कों में हल्की थकान और लगातार कम हीमोग्लोबिन, ये सबसे आम लक्षण होते हैं। मित्रों, ऐसे में मित्रों थैलेसीमिया के मरीजों और उनके परिवारों को जागरूक करना बहुत जरूरी हो जाता है। मरीजों को ये भी बताना बहुत जरूरी होता है कि ये एक अनुवांशिक यानी जेनेटिक विकार है जो माता पिता से बच्चों में आता है। और साथ ही ये जानकारी हमें जरूर देना चाहिए कि ये कोई संक्रामक बीमारी नहीं है। मरीजों को ये महसूस कराना चाहिए कि वो अकेले नहीं है। उन्हें स्थानीय थैलेसीमिया सोसाइटी समूहों से जुड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जहां उन्हें जानकारी और सहायता भी मिल सके। जागरूकता फैलाएं मित्रों कि थैलेसीमिया के मरीज भी सही इलाज के साथ सामान्य जीवन जी सकते हैं। आज हमने इस कार्यक्रम में आपको ये बताया कि थैलेसीमिया है क्या, इसके लक्षण क्या हैं। सही जानकारी, समय पर जांच और थोड़ी सी जागरूकता से हम इस बीमारी को रोक भी सकते हैं। एक छोटा सा टेस्ट एक बड़ी जिंदगी बचा सकता है। और साथ ही अगर आप स्वस्थ हैं तो किसी ज़रूरतमंद के लिए रक्तदान भी करें। मित्रों, जिंदगी अनमोल है, इसे संभाल कर रखें और दूसरों की जिंदगी को भी रोशन करें।

जिंदगी की हर धड़कन की कीमत समझिए और उम्मीद कभी मत छोड़िए। इसी संदेश के साथ सुनिए ये खूबसूरत सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिर मिलेंगे फिल्म का ये गीत। शंकर महादेवन की आवाज़ थी और प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा था। तर्ज बनाई थी शंकर एहसान लॉय ने।

0: हर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

ब्रेक के बाद कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं इशरत। मित्रों, ब्रेक से पहले हम बातें कर रहे थे रेड क्रॉस दिवस और थैलेसीमिया दिवस की। तो मित्रों, 8 मई हमें यही सिखाता है कि जब भी जिंदगी मुश्किल लगती है तो कहीं ना कहीं से जीने के इशारे ज़रूर मिल जाते हैं, बस हमें उन्हें पहचानना है और आगे बढ़ना है। आज 8 मई ऐसी तारीख है जो हमें जीने के कई मायने सिखाती है। और इस गीत के बाद हम बात करेंगे श्रोताओं सेंसस ऑफ इंडिया की, यानी देश की जनगणना की, जहां हर व्यक्ति की गिनती होती है, हर घर की पहचान बनती है और हर जिंदगी को एक महत्व दिया जाता है। दोस्तों, जनगणना सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि उन लाखों करोड़ों लोगों की पहचान है जो इस देश को बनाते हैं। आपको बता दें मित्रों, झारखंड में पहले चरण की जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 1 मई से ही ये प्रक्रिया शुरू हुई है। 14 जून तक चलने वाली जनगणना के तहत 1 से 15 मई तक आप सभी 100 गणना करेंगे। इसके लिए आप वेबसाइट http://ac.census.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन जानकारी भर सकते हैं। 100 गणना के तहत आप लोगों को 33 सवालों का जवाब देना होगा।

स्वगणना के तहत आम लोगों को 33 सवालों का जवाब देना होगा। इनमें मकान की स्थिति, परिवार की जानकारी, व्यक्तियों की संख्या, परिवार का मुखिया, एससी एसटी और अन्य से संबंधित जानकारी भी आपको देनी होगी। पोर्टल 16 भाषाओं में उपलब्ध होगा। यदि किसी ने 100 गणना नहीं की है तब भी चिंता की बात नहीं है। परगणक 16 मई से 14 जून के बीच आपके घर जाकर आपकी जानकारी जरूर दर्ज करेंगे। आप ऑनलाइन के माध्यम से अपनी सही जानकारी खुद दर्ज करें, क्योंकि आपकी एक गिनती और सही जानकारी देश के भविष्य को दिशा देती है। जरा सोचिए, अगर आपकी गिनती ही ना हो तो इस देश की तस्वीर अधूरी रह जाएगी, क्योंकि ये जो देश है तेरा, इसमें हर एक तुम शामिल है, हर एक हम शामिल हैं।

ए आर रहमान की आवाज़ में भी आपने सुना जावेद अख्तर का लिखा सौदे इस फिल्म का ये गीत। इस गीत को संगीतबद्ध किया था ए आर रहमान ने। कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।

हमने सौगणना की जानकारी आपसे साझा की। मित्रों, एक देश सिर्फ लोगों की गिनती से नहीं बनता, बल्कि उसकी संस्कृति, कला और संगीत से भी पहचान पाता है। और जब हम भारत की इसी समृद्ध सांगीतिक विरासत की बात करते हैं, तो एक नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वो नाम है विदुषी गिरिजा देवी का, जिन्हें ठुमरी की रानी भी कहा जाता है। आज उनकी जयंती के मौके पर हम उन्हें नमन करते हैं। जिस तरह से जनगणना हमें बताती है कि इस देश में कितनी जिंदगियां बसती हैं, ठीक उसी तरह ऐसी महान कलाकार हमें बताती हैं कि इस देश की रूह कैसी है, उसकी आवाज कैसी है। एक शहर बनारस, जहां की गलियों में भी सुर बसते हैं, जहां की हर सुबह राग से शुरू होती है, और इसी धरती ने जन्म दिया एक ऐसी आवाज को जिसने ठुमरी को नई पहचान अता की। वो अजीम कलाकार हैं विदुषी गिरिजा देवी। उन्होंने ठुमरी, दादरा, कचरी और चैती जैसी अर्थशास्त्रीय विधाओं को शास्त्रीय स्तर तक पहुंचाया। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 1989 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। मशहूर गायिका गिरिजा देवी ने 5 वर्ष की उम्र में ही संगीत सीखना शुरू कर दिया। 1949 में गिरिजा देवी ने रेडियो पर गाना शुरू किया और 1951 में पहली बार मंच पर गाया, और धीरे धीरे उन्होंने शोहरत की ऊंचाई को छू लिया। कहते हैं संगीत कभी खत्म नहीं होता और कुछ आवाजें हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। विदुषी गिरिजा देवी की गायकी हमेशा हमें भारतीय शास्त्रीय संगीत का एहसास कराती रहेगी। मित्रों, उनकी आवाज में ठुमरी सजती थी तो हर शब्द, हर सुर सीधे दिल तक पहुंच जाता था। चाहे वो कजरी हो या दादरा या बनारसी ठुमरी, उनके हर अंदाज में एक अलग ही जादू था। तो आइए ठुमरी में सुनते हैं उस एहसास को जो विदुषी गिरिजा देवी की पहचान है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विदुषी गिरिजा देवी का गाया ठुमरी भैरवी। जहां एक तरफ ठुमरी की गहराई की बात हम कर रहे थे साथियों, वहीं दूसरी तरफ आधुनिक संगीत की ताजगी की बात भी कर लें, तो इसी नई सोच की एक खूबसूरत आवाज की आज हम बात करेंगे। जी हां, वो नाम है प्रकृति कक्कड़, जो आज के दिलों की धड़कन बन गई हैं।

फिल्म जिसमें उन्होंने अपना प्लेबैक गीत दिया वो टूटिया दिल है, जो 2012 में रिलीज हुई। फिर उन्होंने अंकित तिवारी के साथ मिलकर अलोन फिल्म से कतरा कतरा और खामोशियां फिल्म से भीग लूं गाने रिलीज किए। फिल्म अलोन के गाने कतरा से काफ़ी लोकप्रियता हासिल की उन्होंने। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें देते हैं बधाई और सुनते हैं फिल्म अलोन का ये गीत।

प्रकृति कक्कड़ और अंकित तिवारी की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे अलोन फिल्म का ये गीत। संगीत अंकित तिवारी का था और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर से मुझे यानी रेडियो सखी शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार जमशेदपुर।
1: यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब से बस थोड़ी देर बाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन TARA हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने TARA हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने से भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण विकास बताया। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात 2 दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्य प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तोलाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। उन्होंने बताया कि अमरीका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को लेकर भी बातचीत हुई। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार 15 मार्च के बाद से देश में 57 लोगों की मौत खसरे से और 279 लोगों की मौत खसरा जैसे संक्रमण से हुई है। महानिदेशालय ने बताया कि परीक्षण किट की कमी से संकट और गहरा गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 77,418 पर, जबकि निफ्टी 121 अंक की गिरावट के साथ 24,205 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। आइए सुने कार्यक्रम शीर्षक गीत।

शीर्षक गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। प्यार सिर्फ महसूस नहीं किया जाता, प्यार वो एहसास है जो हर धड़कन में बस जाता है, और जब किसी के सांसों में अपनी सांसें मिलने लगें, तो समझ लीजिए मोहब्बत सिर्फ शब्द नहीं पूरा संसार बन जाती है।

0: इस गीत के बाद लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: अरे हमारे बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

जो हर बेचैनी में राहत बन जाए, हर खामोशी में धड़कन बन जाए। और अब पेश है एक ऐसा ही गीत जो सांसों की गर्माहट, मोहब्बत की नज़ाकत और दिल के एहसासों को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। लीजिए सुनिए ये गीत।

जब मोहब्बत दिल से निकलकर सांसों में बस जाए तो हर धड़कन सिर्फ एक ही नाम लेने लगती है, और फिर दिल यही कह उठता है, पिया लागी लगन बस तेरे नाम की। ये वो एहसास है जहाँ किसी का प्यार सिर्फ याद नहीं रहता बल्कि हर सांस के साथ जीने की वजह बन जाता है। हर पल उसका नाम, हर एहसास में उसका जिक्र, मानो सांसों का हर रिश्ता उसी से जुड़ गया हो।

0: इस गीत के साथ शीर्षक गीत अब ख़त्म हुआ। हम आपको बताते चले आज जो गीत आपने सुना उन फिल्मों के नाम, परवाना, जीत, राय, दाग द फायर। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
2: चलो,
1: कहाँ
4: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इसके तहत आइए सुनते हैं राग मुल्तानी में सत्य किंकर बंदोपाध्याय का ख्याल गायन।

शारदीप भट्टाचार्य का सरोदवादन अभी आप सुन रहे थे। रात था वृंदावनी सारंग। और अब लीजिए सुनिए पंडित विष्णुदेव चट्टोपाध्याय का ख्याल गायन, राग है पटदीप।

0: cara romana.
1: राग भीम पलासी में भी आप सुन रहे थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का ख्याल गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब से बस थोड़ी देर बाद, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। श्री शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबुधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात

व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। श्री मिस्री ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबूधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात दो दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशा नायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। महानिदेशालय ने बताया है कि परीक्षण किट की कमी से यह संकट और गहरा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन के पार। बफर स्टॉक से 3 गुना अधिक भंडारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कल्याणकारी योजनाओं को मिलेगी मजबूती। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने स्वयं सहायता समूहों के बीच 40 प्रसंस्करण इकाइयों का किया वितरण। 65 लाभुकों को 17 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि की प्रदान। देवघर में नवंबर से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय वीजा सेंटर। अब सिंगापुर, दुबई और मलेशिया समेत कई देशों के लिए देवघर में मिलेगी वीजा सुविधा। मोरी स्टेशन पर विकास कार्यों के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिए जाने के कारण आज और कल कई ट्रेनों का परिचालन रहेगा प्रभावित। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। और अब समाचार विस्तार से। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। यह मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मांडर प्रखंड परिसर में स्वयं सहायता समूहों और प्राथमिक सहकारी समितियों के बीच गेहूं प्रसंस्करण मशीन तथा मिनी राइस मिल का वितरण किया। कार्यक्रम के तहत कुल 40 प्रसंस्करण इकाइयां लाभुकों को सौंपी गईं, जबकि प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं से प्रभावित 65 लाभुकों के बीच 17,24,000 रुपए की सहायता राशि भी वितरित की गई। झारखंड बिहार का पहला वीजा फैसिलिटी सेंटर अक्टूबर नवंबर में देवघर में शुरू होगा, जिसकी जानकारी सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने दी। यह पूर्वी भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी फिलहाल वीजा बनाने की सुविधा नहीं है। शुरुआत में यहां छोटे देशों के लिए वीजा बनेंगे और पर्यटन या पढ़ाई के लिए सिंगापुर, दुबई, मलेशिया और बैंकॉक जाने वालों को सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही देवघर एयरपोर्ट से हैदराबाद, गुवाहाटी व सूरत के लिए सीधी उड़ान और गोड्डा से गुजरात, राजस्थान के लिए सीधी रेल सेवा की भी तैयारी है, जिससे क्षेत्रीय विकास, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने मैराथन में भाग लिया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
1: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था कि आकाशवाणी से जैसे आपका लगाव पिछले 9 दशकों से बना हुआ है, आने वाले समय में भी वैसे ही बना रहेगा।
0: रांची विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की फीस वापस करेगा। कुलपति डॉ. सरोज शर्मा ने बताया कि सत्र 2024-25 की प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं हो पाने के कारण फीस वापसी की तैयारी की जा रही है।
2: हम लोगों ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि उन विद्यार्थियों की फी जो है, जो ली गई थी, उसको वापस कर दिया जाएगा। और इस पे हम अगले हफ्ते प्लान कर रहे हैं कि कुछ स्लॉट हम बनाएंगे और विषयवार विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा और उनके पैसे जो सबमिट हुए थे उसको उनको लौटा दिया जाएगा।
0: स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी सिविल सर्जनों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में सरायकेला में मां बेटी की मौत और रांची की घटनाओं पर चर्चा करते हुए संबंधित दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अपर मुख्य सचिव ने अस्पतालों की नियमित निगरानी और रिक्त पदों को भरने पर जोर दिया। पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में यूरेनियम खनन से जुड़े स्वास्थ्य और पर्यावरणीय मुद्दे राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए हैं। द्रौपदी मुर्मू को भेजी गई याचिका के बाद राष्ट्रपति सचिवालय ने झारखंड सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। याचिका में खनन के कारण स्थानीय लोगों में कैंसर, त्वचा और श्वसन रोग तथा भूजल और कृषि भूमि के प्रदूषण की आशंका जताई गई है। याचिकाकर्ता संजीव कुमार अम्बष्ट ने मामले की स्वतंत्र जांच, स्वास्थ्य सर्वेक्षण, मुफ्त इलाज और विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की मांग की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मोरी स्टेशन पर विकास कार्यों के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिए जाने के कारण आज और कल हटिया आदित्यपुर एक्सप्रेस, हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस, रांची खड़गपुर एक्सप्रेस, बोकारो स्टील सिटी रांची मेमू तथा हटिया सांकी मेमू ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसके अलावा बर्धमान हटिया बर्धमान मेमू ट्रेन का आंशिक समापन और प्रारंभ गोमो स्टेशन से होगा। इन ट्रेनों का गोमो हटिया गोमो के बीच परिचालन 8 और 9 मई को रद्द रहेगा। विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान ने दिल्ली सहित साहित्य अकादमी सभागार में रांची की साहित्यकार वीना श्रीवास्तव को अनिता प्रभाकर स्मृति कहानी प्रतियोगिता 2026 में प्रथम पुरस्कार के लिए सम्मानित किया। उनकी कहानी अब आप सुनिए को देश भर से आई 175 प्रविष्टियों में से भाषा, संवेदना, शिल्प और सामाजिक सरोकारों के आधार पर चुना गया। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में महिला से चेन छिनतई मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 अपराधियों और एक ज्वेलरी दुकानदार को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि आरोपियों के पास से छीनी गई चेन से बनाई गई 3 सोने की अंगूठियां, स्कूटी और नकद राशि बरामद की गई है।
3: स्कूटी सवार व्यक्ति थे, उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। घटनाओं पर रोकथाम के लिए एक दल का गठन किया गया, उनको पकड़ने का कार्य किया है। कबरी में हमको 2-3 चीजें प्राप्त हुई, जिसमें एक स्कूटी था जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया था, 15,000 रूपए कैश प्राप्त हुए हैं, 3 सोने की अंगूठी जो सोना पिघलाकर बनाई गई वो भी हमें बरामद।
0: जमशेदपुर में झारखंड क्षेत्रीय युवा संघ ने कल वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 487वीं जयंती भव्य रूप से मनाने की घोषणा की है। संघ के एक सदस्य ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत मरीन ड्राइव स्थित महाराणा प्रताप चौक पर शंखनाद और माल्यार्पण के साथ होगी।
4: 487वां जन्म जयंती है, अदम्य साहस, शौर्य और देश के प्रति मर मिटने के जो जज्बा रहा है, वीर महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती शौर्य दिवस के रूप में मनाई जाती है। मरीन ड्राइव गोलचक्कर पे 5 ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण के बाद आरती करेंगे और आरती के बाद माल्यार्पण का कार्यक्रम किया जाएगा।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 77,418 पर, जबकि निफ्टी 121 अंक की गिरावट के साथ 24,205 पर था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने का भाव 1,41,500 रूपये है, जबकि चांदी की कीमत 2,68,000 रूपये प्रति किलो है। रांची के रातू थाना क्षेत्र में सड़क विवाद के दौरान मारपीट और लाइसेंस से राइफल छीनने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर लिया है। रांची पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर छीनी गई राइफल और घटना में प्रयुक्त पिकअप वैन बरामद की है। क्रिकेट आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। इससे पहले कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। और अब अंत में मुख्य समाचार। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन के पार, बफर स्टॉक से तीन गुना अधिक भंडारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कल्याणकारी योजनाओं को मिलेगी मजबूती। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने स्वयं सहायता समूहों के बीच 40 प्रसंस्करण इकाइयों का किया वितरण, 65 लाभुकों को 17 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि की प्रदान। देवघर में नवंबर से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय वीजा सेंटर, अब सिंगापुर, दुबई और मलेशिया समेत कई देशों के लिए देवघर में मिलेगी वीजा सुविधा। मोरी स्टेशन पर विकास कार्य के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिए जाने के कारण आज और कल कई ट्रेनों का परिचालन रहेगा प्रभावित। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। दिन के 1:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रेडियो सखीशरत का प्यार भरा आदाब नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
7: ज्ञान विज्ञान
8: इतिहास के पन्नों से,
9: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
10: मौसम का मिजाज,
7: अपने शहर की खबरें,
9: बातों मुलाकातों के साथ
10: सुरीला मनोरंजन
7: और भी बहुत कुछ।
6: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
10: दिन के 11:05 से 12 बजे तक
9: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
11: नमस्कार जमशेदपुर।
0: फिल्म संगीत कार्यक्रम के सुरीले सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म हत्या का ये गीत। इस गीत को लिखा था समीर ने और धुन बनाई थी नदीम शर्मा ने।

फिल्म मुस्कान का ये गीत भी आपने सुना, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ें थीं। समीर ने इस गीत को लिखा था और निखिल विनय ने संगीतबद्ध किया था। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे दिल ही दिल में फिल्म का ये गीत। अभिजीत की आवाज़ थी, महबूब ने इस गीत को लिखा था, एआर रहमान ने संगीतबद्ध किया था। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे संतराल के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
5: हेलो डॉक्टर,
4: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
5: हेलो डॉक्टर,
6: जलवायु न्याय, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु संकट एक निष्पक्षता का भी मामला है। यह उन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जिन्होंने इसे पैदा करने में सबसे कम योगदान दिया है, जैसे कि गरीब लोग, महिलाएं, बुजुर्ग लोग और आने वाली पीढ़ियां। जलवायु परिवर्तन को मानव अधिकार के मुद्दे के रूप में देखने का मतलब है कि सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। यह उन लोगों को साक्षात बनाता है जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। यह देशों और पीढ़ियों के बीच जिम्मेदारी को निष्पक्ष रूप से बांटता है। जलवायु न्याय का मतलब है सबके लिए समानता, शांति और सतत विकास। क्या आप जानते हैं, यदि दुनिया का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो अफ्रीका की आधी से ज्यादा आबादी कुपोषण के जोखिम में पड़ सकती है।

उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे कुछ ना कहो फिल्म का ये गीत। गीत जावेद अख्तर ने लिखा था और धुन बनाई थी शंकर एहसान लॉय ने।

समीर का लिखा, नदीम श्रवण का संकेत बद किया, मंजधार फिल्म का ये नगमा भी आपने सुना, अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ें थीं। और ये था कार्यक्रम का आखिरी गीत। इस गीत के साथ फिल्म संगीत अब खत्म हुआ। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब से बस थोड़ी देर बाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायक के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक

0: मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
3: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
4: इंडिया कंट्रीब्यूट्स।
3: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्य पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
5: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
6: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
5: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
7: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
8: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
5: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और करैकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार

उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुने कार्यक्रम फिल्म संगीत।
1: हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: फिल्म संगीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत।

बेनी दयाल की आवाज़ में भी आपने सुना मयूर पुरी का लिखा, प्रीतम का संगीत बट गया, रेस टू फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं।

बैंड बाजा बारात इस फिल्म का गीत भी आपने सुना श्रेया घोषाल की आवाज़ में। अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा था और सलीम सुलेमान ने संगीतबद्ध किया था। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: चुनौतियों पर चर्चा की। जल योद्धा पद्मश्री उमाशंकर पांडे ने पानी की बर्बादी रोकने को सबसे बड़ी चुनौती बताया।
1: झारखंड झरनों का प्रदेश है, पेड़ों का प्रदेश है, खनिज का प्रदेश है, सभ्यता का प्रदेश है, संस्कृति का प्रदेश है। खेत का पानी खेत में रहे, मेड़बंदी करें, वाटर सेट छोटे छोटे जो नाले हैं उनको पानी को रोका जाए, वर्षा की बूंदें जहां गिरे वहीं रोकें, जल को धन मानकर रोकें, जल जीवन है, जल है तो कल है।
0: वहीं सीएम पीडीआई के महाप्रबंधक वीके पांडे ने खदानों में जल संचयन के सफल मॉडलों की जानकारी दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत छठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना पर आधारित इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच सांस्कृतिक तालमेल और आपसी समझ को बढ़ाना है। इस पहल के जरिए युवा प्रतिभागी दूसरे राज्यों का दौरा कर वहां की शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और समृद्ध विरासत का गहन अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। अब तक 6000 से अधिक युवा 130 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की यात्रा कर चुके हैं। देश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति नागरिकों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। इस वर्ष मार्च तक राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस से जुड़ने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 2,17,00,000 के पार पहुंच गई है। वहीं असंगठित क्षेत्र के लिए शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने भी नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके लाभार्थियों की संख्या अब 8,96,00,000 से अधिक हो गई है। झारखंड के बहुचर्चित उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में जेल में बंद 168 आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। आज रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अदालत ने प्रत्येक आरोपी को 20,000 रुपए के 2 निजी मुचलकों पर जमानत प्रदान कर दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में एक विशेष मैराथन का आयोजन किया गया। 3.5 किलोमीटर की इस दौड़ को प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी और महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आकाशवाणी की यात्रा और भविष्य के संकल्पों पर अपने विचार साझा किए।
2: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
3: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा और ये उत्सव है। हम देश की सेवा में जो आकाशवाणी का योगदान रहा है उस योगदान को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: मैराथन में शामिल सभी प्रतिभागियों को पदक और विजेताओं को ट्रॉफियां प्रदान की गई। जमशेदपुर के कालीमाटी रोड पर कल देर रात भीषण आग लग गई। यहां बिक्री के लिए खड़ी 2 कारें अचानक लगी आग में जलकर पूरी तरह राख हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी भीषण थी कि उसे देखते ही देखते दोनों वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सरायकेला खरसावां जिला अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अपराधी को कड़ी सजा दी है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने राजनगर निवासी 24 वर्षीय राज हिमब्रम को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और अब मौसम का हाल। राज्य के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में देवघर, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, जामताड़ा, लातेहार और लोहरदगा के कुछ हिस्सों में गरज और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। खराब मौसम को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और पेड़ों या बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: आकाशवाणी के रांची केंद्र से अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
1: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
1: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
1: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
2: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
1: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं
2: जी,
1: यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
2: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी जी जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
1: जी श्रोताओ, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
2: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
1: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
2: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
1: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
2: जी,
1: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
2: जी।
1: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
2: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
1: जी श्रोताओं, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
2: जी,
1: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये यानी माउना केया
2: जी।
1: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
2: जी।
1: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
2: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है, जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया। आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
1: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें
2: जी।
1: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है, इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है
2: जी। समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
1: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहां समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
2: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहाँ पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहाँ कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है?
1: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
1: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
1: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है रविंद्रनाथ टैगोर।
2: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविंद्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
1: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर्चित्त पुण्यतीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसी भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव

0: अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं, जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
1: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल भंगा, विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे।
0: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
2: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी, उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
0: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।

0: कवींद्र रवींद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
1: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
0: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।
2: बृष्टि पड़े टापुर टुपुर, आए दिए सोनार नूपुर।
0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखी।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थी। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

0: 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर
2: शांति। सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
2: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
1: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था

0: विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी, उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
1: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
2: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
0: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूँ, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
2: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
1: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं, गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमरीका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और अब प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत।

इसके तहत आइए सुनते हैं इमदाद खां का सितार वादन, राग है रचना भटियाली।

अभी आप सुन रहे थे राग रचना भटियाली में इमदाद खां का सितार वादन। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न हुआ।

0: आप सुन रहे थे मुंडारी लोकगीत, कलाकार थे थॉमस बाजरे व साथी। इसी के साथ झारखंड के लोकगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।

आकाशवाणी एट 90। आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से अब से बस थोड़ी देर बाद।

0: मंत्री जेपी नड्डा ने प्राथमिक स्वास्थ्य टीमों के लिए एक विशेष एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को सशक्त बनाना है, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सके। रांची में जल संरक्षण पर केंद्रित सुजलम झारखंड 2026 का भव्य आयोजन हुआ। जल संसाधन विभाग और सस्टेनेबल कॉमर्स फोरम के इस साझा प्रयास में विशेषज्ञों ने जल सुरक्षा की चुनौतियों पर चर्चा की। जल योद्धा पद्मश्री उमाशंकर पांडे ने पानी की बर्बादी रोकने को सबसे बड़ी चुनौती बताया। धनबाद के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के वासेपुर स्थित घर पर आज पुलिस ने बड़ी कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। बैंक मोड़ थाना और भूली ओपी पुलिस ने भारी सुरक्षा बल के साथ अदालत के आदेश पर यह कार्रवाई पूरी की। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने आज अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका विद्यालय से प्रोजेक्ट पहल की शुरुआत की। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना है। पाकुड़ के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कटे होंठ और तालू वाले बच्चों के लिए विशेष मेगा कैंप का आयोजन किया गया। आरसीएच पदाधिकारी डॉ एसके झा ने शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने 25 बच्चों की स्क्रीनिंग की। राज्य के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में देवघर, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, जामताड़ा, लातेहार और लोहरदगा के कुछ हिस्सों में गरज और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित होने वाली 2 दिवसीय सीनियर रैंकिंग नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए साहिबगंज के 4 पहलवानों का चयन हुआ है। इसमें महिला वर्ग में रूपाली कुमारी और रोशनी कुमारी, जबकि पुरुष वर्ग में गुंजन यादव और अंगद कुमार झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: समाचार मुख्यांश भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। और अब आइए सुनते हैं बज़्म-ए-क़व्वाली। फनकार हैं हबीब पेंटर और साबरी ब्रदर्स।

आपका खादिम नौशाद। सूफिया कलाम में हबीब पेंटर था।

क्योंकि भूख धूप लगे साया नहीं और भूख लगे फल दूर, तो साजन को घर दूर है जैसे लंबी खजूर। चढ़े सो प्रेम रस चखे और गिरे तो

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक

कौन अग्नि से तेज है के का जरते कारी तो मिला जवाब कि जल से पतला ज्ञान है, जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी। भाई क्रोध अग्नि से तेज है, गुस्सा अग्नि से तेज है और कलंक का जरते कारी। इसलिए नजर अंजाम पर रखना ये दुनिया देखने वाले, यहाँ मंजिल पे खो जाते हैं मंजिल देखने वाले। अरे बहुत ही कठिन।

बहुत कठिन है दगरपन घट की, तो हरम और देर के झगड़े कहाँ तक कोई सुलझाए, हरम और देर के झगड़े कहाँ तक कोई सुलझाए। जिसे हर तरह फुर्सत हो वो इस मैदान में आए, क्योंकि न इनकी मंजिलें सीधी न इनका रास्ता सीधा, इधर पत्थर का पूजन है तो इधर है मतलबी सजदा, यह है मंदिर का शैदाई और यह है मस्जिद का दिलदादा, इसे है स्वर्ग का लालच तो यह है जन्नत का मतवाला, इधर भी राह में चक्कर इधर भी राह में चक्कर, इधर काशी में है पत्थर इधर काबे में है पत्थर, इधर पत्थर का पूजन है तो इधर पत्थर को बोसा है, समझ में कुछ नहीं आता के आखिर माजरा।

इधर पंडित अकड़ते हैं कि वो काशी में रहता है और इधर है शेख जी नादा कि वो काबे में रहता है। यानी जैसे मस्जिद भीतर अल्लाह बंद और ईश्वर कैद शिवालन में, स्वर्ग पे कब्जा पंडित जी का, जन्नत अल्लाह वालन में। भाई राम की पड़ गई खींचा तानी, राम फंसे जंजालन में।

0: लगी,
1: पीत लगी सामरा सकी, सो मंजधार हम सोट की, बात नहीं है जिगर में याद रहत नागर नटी, अब हीरा लाल जवाहर मोती शोभा वाके मोर मुकट की, तो जल भरने को चली वाली हाथ झाड़ सिर धरमट की, तो छुम छगदी के पाँव के बजे बिछुआ पम पगदी के पाँव की पायल खटकी, सुम सगदी के शीश पे धरी मटकी, तो झूम जगदी के जल में जा मटकी, वही खड़ा था झुंड सखिल का अब जाय नारुल में भटकी, कहाँ गए वो कृष्ण सखी मोए बात बता दो झटपट की, तो क्या गोकुल में रास रचत के सैर करत बंसी बटकी, इतना सुन के तभी नार ने सर से मटकी धरपट की, बहुत कर

बहुत कठिन है, डगर पनघट की कोई गुल को तरसता है और कोई गुल को मसलता है, कोई महवे नजारा

है, कोई सूली पे चढ़ता है, किसी की खाल खिंचती है, कोई दुनिया में फलता है। हबीब अब क्या कहूँ, बस मुख्तसर ये है, जो उस पर जान देता है वही बर्बाद रहता है।

कान कर हटकी मैं दध बेचन जात वृंदावन लपट झपट पटकी मटकी अनत देश की अलम गुजरिया अलम देश की अलम गुजरिया फूली फिरे भटकी भटकी बहुत।

कहा बिगड़े गो, अब जाएगी लाज तिहारी। तुम तो दीना नाथ कहावत मैं अत दीन दुखारी। जैसे जल बिल मील तरप रही सोगत भई है हमारी। मेरी लाज मती समझो प्रभु ये है लाज तिहारी। सूरदास पाछे पछताई हो जब मोए देखो घारी वरना।

मगर पहले इन्हें दीवाना बनने की जरूरत है। लेकिन ये मुस्लिम यही कहते हैं कि मस्जिद में या मुस्लिम

हबीब पिंटर और साबरी ब्रदर्स की आवाज़ों में आप सुन रहे थे कव्वाली। इसके साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम बज़्म कव्वाली अब यहीं समाप्त होता है।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अरिजीत सिंह की आवाज में आपने सुना सिद्धार्थ गरिमा का लिखा, श्रेयस पुराणिक का संगीतबद्ध किया गीत, फिल्म थी एनिमल। गदर 2 फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे लिखा है सईद कादरी ने, धुन बनाई है मिथुन ने, आवाजें नीति मोहन, विशाल मिश्रा, शहनाज अख्तर, साहिल अख्तर और मिथुन की है।

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे इंद्रनील, संगीतकार सचिन जिगर, आवाजें थी सचिन जिगर, राघव चैतन्य और वरुण जैन की।

इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक मुख्य समाचार प्रसारित होंगे।

0: ये आ
1: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य में बिजली और पानी के संकट को लेकर भाजपा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में आज हजारीबाग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राज्य को केंद्र से पेयजल सुधार के लिए मिले 12,700 करोड़ रूपये का बंदरबांट कर लिया गया है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हिंसा की खबरों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि हिंसा करने वाले अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। आईआईटी आईएसएम धनबाद ने सत्र 2026-28 के लिए अपने प्रतिष्ठित एग्जीक्यूटिव एमबीए कार्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कोर्स विशेष रूप से कामकाजी पेशेवरों और उद्यमियों के लिए डिजाइन किया गया है। विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर संदीप मंडल ने बताया कि 2 वर्षीय इस कार्यक्रम की कक्षाएं ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आज साल 2017 की होमगार्ड बहाली में चयनित अभ्यर्थियों ने अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि यदि उन्हें जल्द नियुक्ति नहीं मिली तो वे आत्मदाह जैसा आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर होंगे। देवघर जिले के ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार का सुनहरा अवसर सामने आया है। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के निर्देश पर एसबीआई आरसीटी में आगामी 11 मई से गाय पालन और वर्मी कंपोस्ट का 12 दिवसीय निशुल्क प्रशिक्षण शुरू होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 18 से 45 वर्ष के ग्रामीण युवक युवतियां आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह जमशेदपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5:02 हुए हैं। युवाओं को संबोधित दैनिक कार्यक्रम युवाणी थोड़ी ही देर में।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
5: दादी कौन सा प्लांट है?
6: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
7: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
5: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
7: क्यों?
5: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
7: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये देख तेरी समझदारी का फल।
8: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
9: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से प्रस्तुत है युवाओं को संबोधित दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार, मैं क्षमा श्री दुबे।
1: मैं हूँ साहिल अस्थाना
0: और आप सुन रहे हैं युववाणी आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: आज की तारीख है 8 मई और शाम के 5:05 हो रहे हैं।
0: अरे साहिल, क्या तुम्हें याद है आज की खास बात क्या है?
1: हाँ क्षमा, आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है।
0: बिल्कुल सही, पर यह है क्या और हम इसे क्यों मनाते हैं?
1: रेड क्रॉस एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा, महामारी और अन्य संकटों के समय लोगों की सहायता करती है। यह संस्था बिना किसी भेदभाव के जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने का कार्य करती है। यह दिन मानवता, सेवा और सहायता की भावना को समर्पित होता है। और तुम्हें हेनरी डुनेंट के बारे में तो पता ही होगा।
0: ओह, हेनरी डुनेंट, द नोबेल प्राइज विनर, मतलब वही रेड क्रॉस के संस्थापक ना?
1: हाँ, और आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। उन्होंने मानव सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। युद्ध में घायल सैनिकों की दयनीय स्थिति देखकर उन्होंने एक ऐसी संस्था बनाने का विचार किया जो हर परिस्थिति में लोगों की मदद कर सके।

0: हाँ, और अगर मैं सही हूँ तो उनके इस महान कार्य के कारण उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। वहीं अपने शहर जमशेदपुर की बात करें तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी पूर्वी सिंहभूम शाखा अब सिर्फ एक सामाजिक संस्था नहीं बल्कि कोल्हान में मानवता की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है।
1: हाँ, रक्तदान से केवल नेत्रदान या टीवी मरीजों की मदद नहीं बल्कि गाँव में स्वास्थ्य सेवा और आपदा राहत तक संस्था की पहल ने हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। जागरूकता अभियान का असर ये रहा है कि जमशेदपुर और आसपास के करीब 12,500 युवा अब हर 3 महीने में स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं, और इसका असर ये रहा है कि 5 वर्षों में खून नहीं मिलने की वजह से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। अपने आप में जमशेदपुर के लिए ये बहुत ही गौरवशाली पल है।
0: हाँ, रेड क्रॉस की स्थापना वर्ष 1863 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इस संस्था का चिन्ह सफेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग का क्रॉस होता है जो शांति और सहायता का प्रतीक माना जाता है। आज रेड क्रॉस दुनिया भर में कई ऐसे संस्थानों में मदद कर चुका है और देश में कई कार्य कर रहा है, और कोरोना महामारी के समय भी रेड क्रॉस ने लोगों तक दवाइयां, भोजन और स्वास्थ्य सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
1: कहा जा सकता है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस हमें त्याग और मानवता का संदेश देता है, प्रेरणा देता है कि हम भी समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों की सहायता करें और मानवता की रक्षा के लिए आगे आएं।
0: आइए इस संस्थान के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए ये सुंदर गीत किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, जो कि 1959 में आई फिल्म अनाड़ी का है, बोल है शैलेंद्र के, आवाज मुकेश की है और इसे संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

0: इतने सुंदर गीत के बाद अब चर्चा करते हैं युवा पीढ़ी के हिसाब से जेंडर इक्वालिटी पर कि हमारे समाज में पुरुष और महिला की जो बराबरी की बात हो रही है, असल में किस प्रकार की समानता की बात है ये, तो चर्चा करते हैं युवाओं की सोच जेंडर इक्वालिटी की ओर। उसके बारे में शमा तुम्हारी क्या राय है?
1: हाँ, आज की महिलाएं किसी से कम नहीं है, यह हमारी छोरियां छोरों से कम है के ये सभी सामाजिक कथन महिलाओं को समानता तो दर्शाते हैं पर कहीं ना कहीं उन्हें कमजोर दिखाते हैं। क्या जरूरत है हमें बेटा बेटी बराबर है या कोई बात नहीं, बेटा या बेटी सब एक समान है? क्यों लड़कियों को हर क्षेत्र में खुद को सिद्ध करना पड़ता है, एक सामाजिक जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है, अपने कंधों पर सब उठाना पड़ता है और परिवार की इज्जत को भी?
0: हाँ शमा, जब जेंडर इक्वालिटी की बात होती है तो अक्सर माना जाता है कि केवल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा जरूरी है। ये बिल्कुल सही है कि महिलाओं को समान अवसर और सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, लेकिन क्या समानता का मतलब केवल एक पक्ष की समस्याओं को सुनना है? नहीं, सच्ची जेंडर इक्वालिटी तब होगी जब लड़कों की समस्याओं और भावनाओं को भी उतनी ही गंभीरता से समझा जाए।
1: हाँ, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ साहिल, पर लड़कों के लिए दुनिया को जानने की जंग घर से पैर बाहर निकालने के बाद शुरू होती है, पर लड़कियों की जंग तो घर से ही शुरू होती है। अपनी आज़ादी के लिए हर वक्त लड़ना, फिर उस मिली आज़ादी का दुरुपयोग ना हो यह सुनिश्चित करना, अपने आप को अपनी काबिलियत को सिद्ध करना कि लड़कियां किसी से कम नहीं और हम हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं।
0: समाज बचपन से ही लड़कों को सिखाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, रोना कमजोरी है। यही कारण है कि कई लड़के अपने मानसिक तनाव और परेशानियों को भी छुपाते रहते हैं। आज डिप्रेशन और आत्महत्या के मामलों में बड़ी संख्या पुरुषों की है, लेकिन उनकी भावनाओं पर बहुत कम चर्चा होती है। साथ ही परिवार और समाज पर लड़कों के कमाने और जिम्मेदारियों का दबाव रहता है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो हमेशा सफल हों और मजबूत रहें, कभी हार नहीं माने। ये दबाव कई बार उन्हें मानसिक रूप से तोड़ देता है। कुछ मामलों में ऐसे कानूनों का गलत इस्तेमाल भी देखने को मिलता है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इससे निर्दोष लड़कों और उनके परिवारों को भी परेशानी होती है, इसलिए कानून का निष्पक्ष और संतुलित होना जरूरी है। इससे ये साबित नहीं होता कि लड़कियों की समस्याएं कम हैं, लेकिन अगर हम सच में चाहते हैं कि दोनों पक्षों में बराबरी हो तो दोनों पक्षों की समस्याओं को भी समझना होगा।
1: हाँ साहिल, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि कई बार संविधान द्वारा बनाए गए कानून गलत प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, पर महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए लगता है कि कानून और सख्त होने चाहिए। चाहे वो निर्भया कांड हो, हाथरस की घटना हो, एसिड अटैक हो या आरजी कर मेडिकल कॉलेज का रेप केस, घटनाएं इतनी गंभीर होने के बावजूद न्याय मिलने में एक दशक तक का वक्त लगा और अभी भी कई केसेस की हेयरिंग कोर्ट में चल रही है। इन सब को मद्देनजर रखते हुए मुझे तो लगता है कानून और सख्त होने चाहिए, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए पुरुषों के लिए भी कुछ कानून बनने चाहिए। इस विषय पर काफी नए जेंजी शब्द आ गए हैं जैसे फेमिनिज्म, पर असल में फेमिनिज्म समान अधिकारों की बात करती है, ना कि सिर्फ महिलाओं के अधिकारों की। दहेज प्रथा, सती प्रथा, ऐसी कई कुरीतियां हैं समाज की जिनसे महिलाओं को लड़ना पड़ा है और आज जाकर समान

0: पायदान पर हम हैं।
1: हाँ वो तो है ही। उसके बाद हम पुरुषों की समस्याओं की बात करें तो असक्षम होने की बात भी, तलाक के बाद एलिमनी, रिजर्वेशन इत्यादि। पर क्या कर सकते हैं शमा, इस विषय पर तो चर्चा कभी खत्म नहीं हो सकती। पर ये कह सकते हैं कि लड़का हो या लड़की, सबकी अपनी जंग है।
0: हाँ साहिल, सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, जंग है। और हम इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि हमें किसी से बराबरी नहीं करनी, क्योंकि ईश्वर ने सबको समान बनाया है और हम इंसान कोई नहीं होते उस समानता को भंग करने वाले।
1: इस समानता को आगे बढ़ाते हुए एक गीत सुनते हैं जो कि जिंदगी को लेकर है, हम उन्मुक्त होकर अपना जीवन जिए।
0: आइए सुनते हैं जब तक है जान 2012 में आई फिल्म का ये गाना। बोल है गुलजार के, गायन है नीति मोहन का और संगीतबद्ध किया है AR रहमान ने।

0: आइए इस गीत के बाद बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करते हैं, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। आज के समय में तेज रफ्तार लोगों को बहुत आकर्षित करती है, बाइक हो या कार, तेज चलाने में लोगों को रोमांच महसूस होता है। खासकर युवाओं में स्पीड का शौक तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यह रोमांच कई बार बहुत खतरनाक साबित होता है। इसलिए कहा जाता है स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, यानी तेज रफ्तार कुछ पल का रोमांच तो देती है लेकिन जान भी ले सकती है।
1: सड़क पर वाहन चलाते समय थोड़ी सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है। कई लोग जल्दी पहुंचने के चक्कर में ट्रैफिक नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे तेज गति से वाहन चलाते हैं, ओवरटेक करते हैं और मोबाइल का उपयोग करते हैं। इससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। हर साल हजारों लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं। इसमें अधिकतर हादसे तेज रफ्तार के कारण होते हैं। आइए शहर के कुछ युवाओं से बात करते हैं।

0: नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी है। मैं जमशेदपुर घोड़ाबंदा का रहने वाला हूँ। आजकल भारत में होने वाली अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण ओवर स्पीडिंग है, जो हर साल हजारों जाने ले लेती हैं। तेज रफ्तार गाड़ी पर नियंत्रण खोने की संभावना बहुत अधिक होती है, जिससे अचानक मोड़े या बाधा आने पर भीषण दुर्घटना हो सकती है। तेज गति से चल रहे वाहन को रोकने के लिए अधिक दूरी और समय की आवश्यकता होती है, जिससे सामने कुछ आने पर टक्कर से बचना लगभग असंभव हो जाता है। ओवर स्पीडिंग के कारण होने वाले हादसों में चोट की गंभीरता बहुत अधिक होती है, जो अक्सर जानलेवा साबित होती है। गति सीमा का पालन न करना न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डालना है, इसलिए सुरक्षित ड्राइविंग के लिए गति धीमी रखना अनिवार्य है। मैं इसी से संबंधित दो घटनाओं के बारे में बात कर सकता हूँ। एक पटना में अटल पथ पर एक 16 वर्षीय युवक जब सड़क पार कर रहा था, तब एक तेज रफ्तार कार ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक का पैर शरीर से अलग हो गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कार चालक मौके से फरार हो गया। और दूसरा, मैं जमशेदपुर के एक शोरूम में घुसी कार की बात कर सकता हूँ। जमशेदपुर में जो देर रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर लिवाई शोरूम में जा घुसी।
1: आजकल युवाओं में स्टंट करने और रील्स बनाने का चलन भी बढ़ गया है। वे सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के लिए अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल देते हैं। कुछ सेकंड की प्रसिद्धि के लिए पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। परिवार के लोग भी ऐसे हादसों से गहरे दुख में चले जाते हैं।
2: हमें ये समझना चाहिए कि जीवन बहुत अनमोल है। कुछ मिनट जल्दी पहुंचने से ज़्यादा ज़रूरी सुरक्षित पहुंचना है। सड़क पर हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। वाहन को नियंत्रित गति में चलाना चाहिए। सावधानी ही सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय है। आइए जमशेदपुर के इन युवकों से बात करते हैं।
3: मैं नेहा अंजुम, जमशेद

0: से। एक बार मैंने अपनी आंखों के सामने एक बाइक एक्सीडेंट देखा था, सिर्फ ओवर स्पीड की वजह से। तब मुझे समझ में आया कि स्पीड कुछ सेकंड का थ्रिल देती है, बट एक एक्सीडेंट पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि रोड पर सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की लाइफ भी इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए हमें हमेशा केयरफुली ड्राइव करना चाहिए और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए।
1: नमस्कार, मेरा नाम अतुल पाठक है, मैं टेलको में रहता हूँ और मेरा शीर्षक है स्पीड किल्स, स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स। तो आज के परिवेश में जिस हिसाब से युवा जो कि तेज गति से गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा ही प्रिफर करते हैं और उन्हें तेज़ गति में गाड़ी चलाना भी बहुत अच्छा लगता है, ये तो सही है, तेज़ गति में गाड़ी चलाना तो अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ये तेज़ गति हमारे मौत का कारण भी बन जाती है। आपने लगातार देखा होगा कि पिछले 2 से 3 महीने में ऐसी कई सारी मौतें हुई हैं जो जिसमें कि युवा तेज़ गति से गाड़ी चलाने के कारण अपनी जान गंवा बैठे हैं। यहाँ तक कि इस तेज़ गति के कारण कभी कभी तो कुछ ऐसी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं जिसमें उनके शरीर का अंग तक भंग हो जाता है। तो अपील बस सबसे यही रहेगी कि तेज़ गति से गाड़ी चलाना अच्छा तो लगेगा, लेकिन मरने से अच्छा है हम कहीं 5 मिनट लेट से पहुंचे, कम से कम वहां जीवित तो पहुंचेंगे। धन्यवाद।
2: तेज रफ्तार का रोमांच क्षणिक होता है, लेकिन उसके दुष्परिणाम जीवन भर तक रहते हैं, इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए धीमी गति सुरक्षित जीवन।
3: हाँ साहिल, अब बढ़ते हैं आईपीएल अपडेट्स की ओर। कल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच था। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 9 विकेट से डीएलएस प्रक्रिया से जीत प्राप्त की। आज है दिल्ली बनाम कैपिटल कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच और बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला है। हम

अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम युवाणी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने।

श्रोताओं, आज 8 मई है, पर कैलेंडर पर यह तारीख सिर्फ अंक नहीं बल्कि उस निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है जो सरहदों, धर्मों और रंगों से परे है। जी हां श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि जहां युद्ध की विभीषिका होती है या प्रकृति का प्रकोप शहर को उजाड़ देता है, तब वो कौन सी शक्ति है जो बिना किसी भेदभाव के मरहम लगाने पहुंच जाती है? जी हां।

वो शक्ति है रेड क्रॉस। इस महान संस्था की नींव आज ही के दिन जन्मे जीन हेनरी डूनेट ने रखी थी और 1859 के सोल्परिनो युद्ध के मैदान में तड़पते घायल सैनिकों को देखकर हेनरी का दिल पसीज गया था और उन्होंने बिना यह पूछे कि कौन किस देश का सैनिक है सबकी मदद की और वहीं से जन्म हुआ एक सोच का, टूटी फ्रैटली यानी हम सब भाई हैं। रेड क्रॉस सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि 7 सिद्धांतों पर टिकी एक विचारधारा है। जी हाँ श्रोताओं, जिसमें पहला है मानवता, दूसरा निष्पक्षता, तीसरा तटस्थता, चौथा स्वतंत्रता, पांचवा स्वैच्छिक सेवा, छठा एकता और 7वां सार्वभौमिकता। श्रोताओं, आज के इस खास दिवस पर हम भी अपने भीतर की मानवता को जगाकर इस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि जहां मानवता की पुकार है वहीं रेड क्रॉस का हाथ है।

हम सब उस्ताद हैं। इस फिल्म का ये गीत श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा था असद भोपाली ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुड्ढू।
2: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो कूल।

0: और श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं वर्टिगो की। जी हाँ श्रोताओं, वर्टिगो केवल एक चक्कर आना नहीं बल्कि ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को महसूस होता है कि उसके आसपास की चीजें घूम रही हैं। तो श्रोताओं चलिए इसी से संबंधित आपको सुनवाते हैं पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता जिसका विषय है श्रमिकों में कान की समस्या से वर्टिगो बीमारी। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर कैलाश प्रसाद दुबे और इनसे बातचीत कर रहे हैं राजेश कुमार राय।
1: श्रमिक श्रोताओं, वर्टाइगो नामक एक शारीरिक समस्या के बारे में, एक व्याधि के बारे में अक्सर हम लोग सुनते हैं, आपने भी सुना होगा, लेकिन वास्तव में वर्टाइगो है क्या बला और इसका क्या लक्षण है, क्या समाधान है, कैसे उपचार हो, कैसे सावधानी बरतें, ये जानना बहुत आवश्यक है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नगर के जाने माने नाक, गला और कान रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कैलाश प्रसाद दुबे जी। नमस्कार डॉक्टर साहब।
2: नमस्कार, जोहार राजेश जी।
1: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम लोग वही, जैसा मैंने बताया कि वर्टाइगो अक्सर हम लोग सुनते हैं, वर्टाइगो कई जगह इस समस्या के बारे में, लेकिन लोग इसको मूल रूप से नहीं जानते हैं कि मुख्यतः है क्या। तो वर्टाइगो क्या है मुख्यतः और इसके लक्षण क्या होते हैं?
2: वर्टाइगो एक बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण है या जिसको हम कहते हैं कि सिम्टम है। इसके सर में चक्कर आना,
1: अच्छा,
2: उल्टी होना, कान में कुछ आवाज सुनाई देना, ये सब साथ में एसोसिएटेड रहते हैं
1: जी। ये मुख्यतः एक लक्षणों का एक मतलब कलेक्शन है।
2: जी हाँ जी हाँ,
1: झुंड कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं का। तो डॉक्टर साहब, आगे आप बताएं हमारे श्रोताओं को कि ये जो वर्टाइगो जो आपने बताया कि सर में चक्कर आना, सिर घूमते रहना, तो किन कारणों से हो सकता है और साथ ही साथ इसकी फ्रीक्वेंसी, बारंबारता क्या हो सकती है? क्योंकि कई बार तो लोग का सर ऐसे भी घूमता है, अन्य समस्या किसी साधारण बात के चलते, थकान के चलते, ज्यादा सोचने के चलते, अनिद्रा के चलते, तो लेकिन वर्टाइगो ही है, इस फ्रीक्वेंसी को बारंबारता क्या होनी चाहिए?
2: देखिए, वर्टाइगो आपने सही कहा कि एकाध बार कभी आए हम थक गए या ब्लड शुगर कम हो गया, डायबिटीज लोगों को ये हो सकता है, लेकिन अगर आपको वर्टाइगो रेगुलरली आ रहा है या चार पांच दिन तक कम नहीं हो रहा है या घट नहीं रहा या बढ़ रहा है, तो आप इसके लिए डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
1: जी जी।
2: और इनके मुख्यतः चार कारण होते हैं।
1: जी हाँ, कारणों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्या मुख्य चार कारण हैं?
2: ये आंख के चलते हो सकता है
1: जी,
2: कान के चलते हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड या मसल्स प्रॉब्लम के चलते हो सकता है,
1: नसों की समस्या।
2: जी हाँ, या फिर ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है।
1: तो निश्चित सी बात है डॉक्टर दुबे कि इसके लिए मतलब चार समस्याएं हैं, तो जाहिर सी बात है कि किसी विशेषज्ञ चिकित्सक के पास जानी चाहिए।
2: जी हाँ,
1: चूंकि ENT का मामला है
2: जी,
1: तो हम लोग आपसे तब आगे बढ़ते हैं और जानना चाहेंगे कि ये कान की अब क्या समस्याएं हैं, कान की क्या बीमारियां हैं जिसके चलते वर्टाइगो परिलक्षित हो सकता है।
2: देखिए राजेश जी, कान अक्सर लोग समझते हैं सिर्फ सुनने के लिए है।
1: जी हाँ, अक्सर हम लोग के मन में धारणा है कि कान,
2: लेकिन कान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन सुनना नहीं है बल्कि बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना उसका बहुत ही मुख्य काम है।
1: अच्छा, मतलब काफी संतुलनकारी इसका इसकी भूमिका भी है।
2: जी हाँ, जो कान के दो पार्ट हैं, एक सुनने के लिए दैट इज ऑडियोलॉजिकल और एक बैलेंस है जो वेस्टिबुलर पार्ट बोलते हैं।
1: अच्छा,
2: तो अगर वेस्टिबुलर पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आपको चक्कर आने की समस्या होगी।
1: तो ऐसी क्या मतलब समस्याएं हैं कान की जिसके चलते वर्टाइगो हो सकता है?
2: कान के चलते वर्टाइगो तीन चार कारणों से हो सकता है। एक, या तो उसमें कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो।
1: अच्छा, कोई संक्रमण अगर हो
2: जी,
1: जी,
2: जिसके चलते कान में पीप जमा हो गया हो।
1: तो किसी चोट के चलते भी हो सकता है,
2: ट्रॉमा के चलते
1: जी,
2: जरूर हो सकता है, या फिर कोई ट्यूमर हो कान में उसके चलते हो सकता है। ये मुख्यतः यही कारण है, बाकी अनेकों कारण है, कोई ड्रग के चलते, दवा।
1: अच्छा, दवा
2: अगर कान, ऑटो टॉक्सिक ड्रग हम कहते हैं
1: जी जी,
2: वो अगर कोई ले रहा हो उसके चलते भी हो सकता है।
1: तो ये कान की विभिन्न समस्याएं डॉक्टर साहब आपने बताई, तो आखिर इसको कैसे, इसका डायग्नोसिस मतलब इसको कैसे पता लगाया जाएगा और फिर इसका उपचार कैसे किया जाएगा?
2: देखिए, अगर आपको चक्कर आ रहा है और साथ में सुनने की समस्या हो या फिर कान में कोई आवाज आ रहा हो जिसे हम टिनाइटस कर रहे हैं
1: जी,
2: या फिर कान से पीप का रिसाव हो रहा हो
1: जी,
2: ये सब अगर साथ में है और चक्कर आ रहा है तो आप अवश्य कान के डॉक्टर को जरूर दिखाएं।
1: अच्छा, चक्कर आने के साथ कान की अगर ये समस्याएं, कोई भी एक समस्या या सारी समस्याएं भी अगर सामने आ रही हैं
2: जी,
1: तो ये ENT
2: दिखाना बहुत ही आवश्यक।

0: बहुत आवश्यक है। तो फिर इसमें उपचार के लिए क्या माध्यम है डॉक्टर साहब?
1: देखिए, ईएनटी सर्जन के पास जाने से आपको ये पता चलेगा कान के किस बीमारी के चलते हो रहा है। कुछ कुछ बीमारी चक्कर वाले जो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, जैसे बेनाइन पैरोक्सिज्मल पोजिशनल वर्टिगो, ये कुछ दिन रहते हैं, ठीक हो जाते हैं।
0: अच्छा, मतलब ये वर्टिगो की भी विभिन्न अवस्थाएं हैं?
1: जी जी जी, विभिन्न तरह के हैं। तो जैसे अगर चक्कर आ रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा, आप दवा ले रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको ईएनटी सर्जन के पास जाना होगा, जो कि कुछ एक्सरसाइज आपको बताएंगे, कुछ टेस्ट करेंगे
0: जी,
1: जिससे आपका ठीक हो जाए। क्योंकि इसमें दवा काम नहीं करेगी, इसमें एक्सरसाइज एंड पोजिशनल चेंजेस जो हम लोग करते हैं उससे ठीक होगा।
0: अच्छा, तो ये बिनाइन मतलब जो बहुत अभी साधारण है?
1: जी, साधारण है किंतु नैगिंग होता है, तंग करता रहेगा।
0: अच्छा, ज्यादा मतलब
1: आप जब लेटेंगे बिस्तरा में, करवट लेंगे, चक्कर आएगा, फिर आप उठेंगे, फिर चक्कर आएगा।
0: अच्छा, अभी डॉक्टर साहब मुझे ख्याल आ रहा है कि कई बार लोग मतलब शंकित रहते हैं या एक दुविधा में रहते हैं कि सर दर्द और सर घूमना या चक्कर के बीच में वो विभेद नहीं पैदा कर पाते, तो ये कैसे पता लगाया जाए कि ये वर्टाइगो है और सर चक्कर है?
1: देखिए, सर चक्कर के साथ,
0: क्योंकि सर दर्द भी एक आम समस्या है।
1: जी, सर चक्कर के साथ अगर सर दर्द हो रहा है तो चांसेस बहुत अधिक है कि आपको माइग्रेन की बीमारी है।
0: जी,
1: तो माइग्रेनस वर्टाइगो भी एक बीमारी होती है।
0: अच्छा
1: जी हाँ, तो बहुत लोगों जिनको माइग्रेन होता है उनको चक्कर भी आता है, तो आपको डॉक्टर को उसका सलाह लेना बहुत ही जरूरी है।
0: तो डॉक्टर साहब, लेकिन मान लिया कोई आम श्रमिक है या आम कोई जनता है जो कि वर्टाइगो को अगर बड़ा ही नहीं पहचान पा रही है, बहुत ही उसको लाइटली, काफी हल्के ढंग से ले रही है, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? इसकी गंभीरता को कैसे लें और क्या इसको हम लोग एक गंभीर बीमारी के रूप में मान सकते हैं?
1: ये बीमारी खुद में गंभीर नहीं है, इसके चलते जो आपको होने वाला है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो या रोड क्रॉस कर रहे हैं, आपको उस समय चक्कर आ गया
0: तो गिर भी सकते हैं,
1: तो आप गाड़ी से एक्सीडेंट कर सकते हैं, रोड पर गिर सकते हैं। इसलिए ये अगर आपको प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य करें।
0: तो ऐसी क्या कोई दवाएं भी हैं जो वर्टिगो के जो मरीज हैं वो लगातार ले सकते हैं और अपने को संयमित रख सकते हैं?
1: देखिए, ये दवाएं जो हैं ये कुछ दिन के लिए ठीक है, 3 दिन 5 दिन 1 सप्ताह, लेकिन अगर इस दवा से आपकी बीमारी ठीक नहीं होती है और बार बार हो रहा है तो जांच अवश्य करा लें, हो सकता है आपको कोई गंभीर बीमारी हो जो बाद में आपके लिए खतरा बन सकता है।
0: जी जी, तो डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि ये तो आपने वर्टाइगो की भी बात की कान की समस्या के चलते, तो कान की जो समस्या है या जो वर्टाइगो से संबंधित जो समस्या है इसके लिए कान की देखभाल कैसे करना चाहिए, इस पे आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए, अगर आपके कान से पीप का रसाव हो रहा है, कोई दवा खाएं जिसके चलते हो रहा है,
0: या सुनने की क्षमता
1: या सुनने की क्षमता कम हो रही है, या कान में कोई आवाज आ रहा है, तो ईएनटी सर्जन से जरूर मिले, क्योंकि हो सकता है आपके कान में एक ऐसा इन्फेक्शन हो जो धीरे धीरे फैल कर ब्रेन में भी जा सकता है।
0: अच्छा,
1: जिसको हम लोग क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, तो ये इन्फेक्शन अगर ब्रेन में चला गया तो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है।
0: मतलब ये जो विभिन्न प्रकार के लक्षण है इनको किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए?
1: जी नहीं, बिल्कुल
0: मतलब तब अगर इसको हल्के में लिया गया तो इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं।
1: जी हाँ, अगर आप इनिशियल स्टेज में दिखाते हैं, सही सलाह लेते हैं, सही डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो आपका ये रोग ठीक हो सकता है।
0: अच्छा, मतलब जाहिर सी बात है कि ये मतलब ये जेनेटिक आनुवंशिक तो शायद नहीं है?
1: नहीं, कुछ कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ कुछ हैं चक्कर जो कि हो सकते हैं
0: जी,
1: बट अक्सर ये होता है कि ये प्रिवेंटिव होगा
0: जी, मतलब पूर्णतः प्रिवेंटिव बचाया जा सकने वाली है
1: जी। और कुछ व्यायाम है इसके लिए, वेस्टिबुलर एक्सरसाइजेस हम लोग बोलते हैं, वो तो करेंगे तो
0: व्यायाम को भी मतलब आप लोग जो विशेषज्ञ सर्जन हैं
1: जी वो बताएंगे, हमारे पास चार्ट भी है,
0: अच्छा
1: हम बताते हैं कैसे करना चाहिए,
0: तो उनके माध्यम से भी जो है जो समस्याग्रस्त व्यक्ति हैं अपने को स्वस्थ रख
1: जी
0: सकते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल।
0: तो डॉक्टर कैलाश प्रसाद दुबे जी, आपने जो कान की समस्या के चलते वर्टिगो नामक जो समस्या उत्पन्न होती है उसके बारे में हमारे श्रोताओं को काफी सुंदर और सटीक जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: श्रमिकों में कान की समस्या से वर्टिगो बीमारी, इस विषय पर श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर कैलाश प्रसाद दुबे और इनसे बातचीत कर रहे थे राजेश कुमार राय।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

और श्रोताओं, आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए बातचीत कर लेते हैं भारत की शिक्षा नीति की। जी हां श्रोताओं, भारत की नई शिक्षा नीति शिक्षा जगत में एक क्रांतिकारी बदलाव है, जो लगभग 34 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बड़ा बदलाव है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। क्योंकि इस शिक्षा नीति का उद्देश्य ही है एक बच्चे को कुशल बनाने के साथ साथ जिस भी क्षेत्र में वो रुचि रखते हैं उन्हें उस क्षेत्र में ही प्रशिक्षित करना। वर्तमान शिक्षा प्रणाली वर्ष 1986 की मौजूदा शिक्षा नीति में किए गए परिवर्तनों का परिणाम है। इसे शिक्षार्थी और देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति बच्चों के समग्र विकास पर ही केंद्रित है, क्योंकि नई शिक्षा नीति केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि भविष्य के भारत का रोड मैप है। यदि इसको क्रियान्वयन सही तरीके से किया गया तो यह नीति रटने वाली शिक्षा से हटाकर सोचने वाली शिक्षा की ओर ले जाएगी। यह भारतीय युवाओं को न केवल कुशल बनाएगी बल्कि उन्हें अपनी संस्कृति और जड़ों से भी जोड़े रखेगी। और अब आइए कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं ये मधुर गीत।

वारिस फिल्म का ये गीत श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाज में। गीत लिखा था वर्मा मलिक ने और संगीत उत्तम जगदीश का था। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम कल कारखाने से मुझे यानी इंदु को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रमिक बंधुओं के लिए दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी के निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वित्री कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरल में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा

0: हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डाटा दिया गया है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 941 अंक बढ़कर 77,959 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 298 अंक की बढ़त के साथ 24,331 पर दर्ज हुआ। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कल भारतीय महिला रिकव टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Senior BJP leader Suvendra Adhikari will be the new Chief Minister of West Bengal. BJP Legislature Party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata today, paving the way for him to become the first BJP Chief Minister of the state. Addressing the media, Union Home Minister Amit Shah said Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
2: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
3: The election process was completed just a few days ago. Around 8 proposals and supporting nominations were received and all of them were in favor of the same name. Sufficient time was also given for any other nomination but no second name was proposed. Therefore, as the central observer, I declare Suvendu Adhikari as the elected leader of the West Bengal Legislative Party.
2: विधान मंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: Tomorrow morning, the oath-taking ceremony of the government will be held at the Brigade Parade Ground. Prime Minister Narendra Modi, along with the host of union ministers and several chief ministers from the BJP rule states, will attend the ceremony. As the ceremony is being held on the occasion of Rabindra Jayanti, cultural performances will also form part of the program. In the formation of a new government in Tamil Nadu, TVK, the single largest party, has been seeking support from the CPI, CPM and the VCK. Congress has already lent support with 5 MLAs. After much discussion today, the CPI and CPM, having 2 MLAs each, has offered unconditional support to TVK to form the government. VCK is likely to announce its decision after the meeting this evening or tomorrow. In another political development, the state BJP president Nayanar Nagendran has clearly said that the party gracefully accepted the election results. Interacting with media, he said the BJP does not wish to align with the TVK in any attempt to form the new government in the state of Tamil Nadu. Somnath Amrit Parv will be celebrated to mark the 75th anniversary of the reconstruction of Somnath Temple. The Prime Minister Narendra Modi will participate in the Somnath Amrit Parv on the 11th of this month at Prabhas Patan Somnath. Speaking to the media, Gujarat Minister Jitu Bhai Vaghani said the Prime Minister will lead a 1 kilometer long mega roadshow from the Triveni helipad to the statue of Veer Hamirji Gohil. Prime Minister Modi will also perform the Kumbh Abhishek, Dhwaja Puja and Mahapuja at the Somnath Temple. The Defence Research and Development Organisation, DRDO, and the Indian Air Force have successfully conducted a maiden flight trial of the Tactical Advanced Range Augmentation Tara weapon off the coast of Odisha yesterday. Raksha Mantri Rajnath Singh has congratulated DRDO, IAF, DCPP and the industry for the maiden flight trial. He described it as a significant development in advancing India's indigenous defense capabilities. Tara is India's first indigenous glide weapon system that converts unguided warheads into precision-guided weapons. It has been designed and developed by the research center Imarat Hyderabad along with other DRDO laboratories. India and Singapore have stressed the importance of bilateral cooperation in countering terrorism as strategic partners. The fifth meeting of the Joint Working Group on Combating Terrorism and Transnational Crime between India and Singapore was held in New Delhi yesterday. The Joint Working Group agreed that confronting terrorism requires concerted action in a sustained and comprehensive manner. The government has said that domestic LPG supply across the country is smooth and no dry out has been reported at any distributorship. Addressing an inter-ministerial briefing in New Delhi, Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said that government's effort has been to ensure that domestic consumers do not face any shortage of gas and that prices remain stable amid the evolving situation in West Asia. Ministry of Ports, Shipping and Waterways has said government continues to engage with every stakeholder to ensure the welfare of all Indian seafarers and uninterrupted maritime operations. Spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that the government continues its outreach to countries in the Gulf. Informed as part of that, Foreign Secretary Vikram Misri paid an official visit to the UAE yesterday. In Indonesia, 3 people were killed after Mount Dukono volcano erupted this morning. Rescuers have found all the survivors from a group of 20 hikers who went missing after the eruption. According to police, 15 people have been taken to hospitals to treat further injuries. India's Simranjeet Kaur has advanced to the semi-final of the women's recurve individual event at the Archery World Cup Stage 2 in Shanghai today. And with that, we end this news bulletin.
4: हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर. इस समय शाम के 6:10 हुए हैं. कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत थोड़ी ही देर में.
5: पुलिस?
6: मिस सीमा
5: जी,
6: अभी पुलिस स्टेशन आई है. रुकिए, वरना घर आ जाएंगे.
5: क्यों? लेकिन मैं
6: अकेले दूसरे कमरे में जाइए. आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो.
5: डिजिटल अरेस्ट?
6: 1 लाख दो, बच जाओगे.
5: इतने पैसे?
6: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए. अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा.
5: जेल तो तुम जाओगे. तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है. डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता. ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें. पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें. उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें.
7: हेलो मम्मा.
8: आरबीआई कहता है
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
4: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से लीजिए सुनिए कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत।

0: आप सुन रहे थे नागपुरी लोकगीत कलाकार थे दीना सिंह। इसी के साथ झारखंड के लोकगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:20 होने वाले हैं। अब संस्कृत में समाचार प्रसारित होंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। वरिष्ठः भाजपा नेता सुवेन्दु अधिकारी भाजपा विधायक दलस्य नेता निर्वाचितः। सः पश्चिम बंग प्रदेशस्य प्रथमः भाजपेति दलस्य मुख्यमंत्री भवितुं सज्जः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सोमनाथ मन्दिरं भारतस्य दृढतायाः, एकतायाः, सभ्यतायाः च बलस्य कालातीतं प्रतीकत्वेन वर्णितम्। डीआरडीओ तथा भारतीय वायुसेनया स्वदेशीयस्य तारा ग्लाइड शस्त्रस्य प्रथमोड्डयन परीक्षणं सफलतया पूरितम्। अपि च भारतस्य सिमरनजीत कौर इत्येषा सांघाई नगरे आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 मध्ये महिलानां रिकर्व उपांत्य चक्रीय द्वंद्वे प्रविष्टवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। पश्चिम बंग प्रदेशे भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता सुवेन्दु अधिकारी अद्य पश्चिम बंग प्रदेशे भाजपा विधायक दलस्य नेतृत्वेन निर्वाचितः, येन तस्य राज्यस्य प्रथमः भाजपा मुख्यमंत्री भवितुं मार्गः प्रशस्तः अभवत्। विधायक दलस्य सभायां अधिकारिणः नाम प्रस्तावितमासीत्, तथा च केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन नवनिर्वाचितानां भाजपा विधायकानां दलस्य वरिष्ठ नेतॄणां च उपस्थितौ औपचारिक रूपेण घोषितम्।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: नव भाजपा सर्वकारस्य शपथ ग्रहण समारोहः श्वः कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मई मासस्य 11 दिनांके गुजरात राज्यस्थितस्य सोमनाथ मन्दिरस्य दर्शनं करिष्यति। 1950-1990 वर्षे भारतस्य प्रथम राष्ट्रपतिना डॉ. राजेन्द्र प्रसादेन नवीकृतस्य मन्दिरस्य उद्घाटनं कृतमासीत्। तस्याः ऐतिहासिक घटनायाः 75 वर्ष पूर्तेः स्मरणार्थम् एषा यात्रा आयोज्यते। अद्य प्रधानमन्त्रिणा स्वस्य राष्ट्रिय दैनिके लेखे एषा सूचना प्रदत्ता। स्वस्य लेखे सः उक्तवान् यत् गत केषुचित् मासेषु सोमनाथ सम्बद्धेषु महत्वपूर्णेषु कार्यक्रमेषु भागग्रहणं तस्य कृते महान् सौभाग्यस्य विषयः अस्ति। अस्य वर्षस्य आरम्भे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इत्यस्मिन् कार्यक्रमे अपि सहभागित्वं कृतवान्। अयं कार्यक्रमः मन्दिरस्य उपरि जातस्य प्रथम आक्रमणस्य सहस्र वर्ष पूर्त्यवसरे आयोजितः आसीत्। प्रधानमन्त्रिणा सोमनाथः भारतस्य सभ्यतायाः, शक्तेः, राष्ट्रिय एकतायाः, संघर्षशीलतायाश्च प्रतीकत्वेन वर्णितम्। डीआरडीओ तथा भारतीय वायुसेना इत्येताभ्यां ह्यः ओडिशा तटस्य समीपे टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन तारा इति शस्त्रस्य प्रथमं साफल्यं उड्डयन परीक्षणं संपादितम्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अस्य सफलोड्डयन परीक्षणस्य कृते डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, डीसीपीपी तथा संबद्ध उद्योगान् अभिनन्दितवान्। सः एतत् भारतस्य स्वदेशीय रक्षा क्षमता संवर्धनस्य दिशि महत्वपूर्णं पदाक्षेपम् इति वर्णितवान्। तारा भारतस्य प्रथमा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्र प्रणाली इति अस्ति, या अमार्ग निर्देशित विस्फोटकान् सूक्ष्म मार्ग निर्देशित शस्त्रेषु परिवर्तयति। अन्याभिः डीआरडीओ प्रयोगशालाभिः सह सहयोगेन हैदराबाद स्थितेन अनुसंधान केन्द्रेण अस्य परिकल्पना तथा विकासः कृतः। एषा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्र प्रणाली स्वप्रकारे प्रथमास्ति, यस्याम् अत्याधुनिकाः अल्पव्ययुक्ताः प्रौद्योगिकयः उपयोजिताः सन्ति। एतत् न्यून व्ययुतस्य शस्त्रस्य अग्निशक्तिं तथा लक्ष्यभेदन यथार्थतां वर्धयित्वा भूलक्ष्यान् प्रभावीरीत्या निष्प्रभावी करोति। प्रियाः श्रोतारः संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः वैश्विक आर्थिक स्थिरतायाः स्तंभरूपेण भारतस्य वर्धमान भूमिकायाः विषये अवधानं प्रदत्तवान् तथा च अन्ताराष्ट्रिय समृद्ध्यै राष्ट्रस्य महत्वपूर्णं योगदानं अवधानं प्रदत्तवान्। सुरीनाम देशे सुरीनामी समाजस्य विभिन्नानां वर्गाणां प्रतिनिधिवर्गाणां सम्बोधनावधौ मन्त्रिणा इदमुक्तम्। सः भारतस्य प्रभावस्य परिणामं अधोरेखितुं अद्यतनीयां दत्तांशान् सूचयन् उक्तवान् यत् अस्मिन् वर्षे वैश्विकवृद्धेः IMF इत्यस्य अपेक्षानुसारं भारतस्य योगदानं सम्पूर्णे वैश्विकवृद्धेः 17% यावत् अस्ति।
2: इंडिया कंट्रीब्यूट्स,
3: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सके।

0: ഒക്കെ
1: including more free trade agreements for countries to avail of it.
0: വിദേശ രാജ്യമന്ത്രി കീർത്തിവർദ്ധന സിംഹ അവദത് യത് പ്രവാസ വിഷയെ ഭാരതസ്യ ദൃഷ്ടികോണ പ്രവാസിനാം സംരക്ഷണസ്യ മൂല പ്രചാലന സിദ്ധാന്തൈഹ പ്രവാസസ്യ ജീവനചക്രസ്യ സർവസമാവേശക ശാസനേന സുദൃഢ അന്താരാഷ്ട്രീയ സഹയോഗേന ച മാർഗദർശിതഃ അസ്തി. ശ്രീമന്ത്രി ന്യൂയോർക്ക് നഗരെ സംയുക്തരാഷ്ട്രസംഘസ്യ ഭാരതസ്യ സ്ഥായി അഭിയാനെ ദ്വിതീയാന്താരാഷ്ട്രീയ പ്രവാസ സമീക്ഷാ മഞ്ചെ പ്രതിനിധിദലസ്യ പ്രമുഖാൻ സംബോധയനാസീത്.
2: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है. भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है.
0: प्रशासनेन उक्तं यत् सम्पूर्णे देशे गृह एलपीजी इत्यस्य आपूर्तिः सुकरः अस्ति. कस्मिन्नपि वितरणसंस्थायां शुष्कतायाः सूचना नास्ति. नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीयं वार्तालापं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम् प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य सचिवः सुजाता शर्मा इत्येषा उक्तवती यत् प्रशासनस्य प्रयासः अस्ति यत् देशीय ग्राहकेभ्यः गैस इत्यस्य अभावः न भवेत् तथा च पश्चिम एशियायाः विकसित स्थितौ मूल्यानि स्थिराणि एव भवेयुः.
3: भारत सरकार ने ये कोशिश की अभी तक कि कोई प्राइस इंक्रीज ना हो और इसके लिए एक्साइज ड्यूटी भी कम की. इसके अलावा और भी बहुत सारे कदम लिए जैसे कि रिफाइनरीज के अंदर एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, पीएनजी कनेक्शंस को प्रमोट करना, हमारे फर्टिलाइजर प्लांट्स को भी धीरे धीरे बढ़ाया गया और अब लगभग 98% तक उनकी सप्लाई इंश्योर की गई है.
0: आकाशवाण्या स्वीय 90वें वार्षिकोत्सवस्यावसरे अद्य राष्ट्रीय राजधान्यां मैराथन इत्यस्य आयोजनं कृतम्. प्रायः 3.5 किलोमीटर मितं मैराथन इत्येतत् आकाशवाणी भवनात् आरभ्य कृषिभवने, रेलभवने, आरबीआई भवने च भूत्वा पुनः आकाशवाण्याम् एव समाप्तम्. आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य प्रसारभारत्याः च कर्मचारिणः स्वीय परिवारस्य सदस्यैः च सह अस्यां मैराथन धावन प्रतियोगितायां भागं गृहीतवन्तः. सर्वे प्रतिभागिनः धावन समापन पदकं प्राप्तवन्तः. पुरुष महिला विभागयोः शीर्षत्रयेभ्यः धावकेभ्यः पारितोषकानि प्रदत्तानि. अस्माकं संवाददात्रानुसारं प्रसारभारत्याः सीईओ गौरव द्विवेदी, आकाशवाण्याः महानिर्देशकः राजीव कुमार जैनः च स्पर्धायै हरितध्वजं प्रदर्शितवन्तौ. भारतस्य सिमरनजीत कौर इत्येषा अद्य सांघाई नगरे आयोजितस्य आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 इत्यस्मिन् महिलानां रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धायाः उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टवती इति वार्ताः.
4: एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है. इस समय शाम के 6:30 हुए हैं. दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत थोड़ी ही देर में.
5: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
6: जी,
5: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
6: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए.
5: पर ये होगा कैसे?
6: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें.
5: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो
6: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं.
5: बस
6: बस
5: समझ गया.
6: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं.
7: आरबीआई कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.

0: अपने घर।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: बंधु नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
3: रुक जा बुड्ढू।
4: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
2: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

श्रोताओं, हमारी अर्थव्यवस्था में किसान ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो केवल एक बीज, थोड़ा सा पानी और बहुत अधिक मेहनत से कुछ न कुछ पैदा कर सकता है। खेती आशा का पेशा है, जहां आज बोए गए बीज कल की फसल बनते हैं। मैं हूं राजेश और इस समय आप सुन रहे हैं किसान भाई बंधुओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। आज के इस कार्यक्रम में तमाम विषयों पर होगी आपसे बातचीत, सुनेंगे लोकगीत, साथ ही थैलेसीमिया पर आपको सुनवाएंगे एक भेंट वार्ता।

किसान भाइयों, विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह दिन मानवता, करुणा और सेवा की भावनाओं को समर्पित है। रेड क्रॉस एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो आपदा, युद्ध, महामारी या किसी भी प्रकार की संकट की स्थिति में पीड़ितों की मदद करती है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य रेड क्रॉस संस्था और इसके कार्यकर्ताओं के योगदान को सम्मान देना है। विश्व रेड क्रॉस दिवस न केवल एक दिन है, बल्कि यह सेवा, साहस, करुणा और मानवता का प्रतीक है। हेनरी ड्यूना द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन आज लाखों लोगों को संकट की घड़ी में सहायता प्रदान कर रहा है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में की गई थी। यह संस्था देश में रक्तदान अभियान, आपदा राहत कार्य, हेल्थ केयर और सामाजिक सेवा जैसे अनेक क्षेत्रों में कार्य करता है। जब मनुष्य पीड़ा में हो तो क्या हम उसकी पहचान जाति, धर्म, भाषा, राष्ट्रीयता या राजनीति देखकर मदद करेंगे, या केवल मानवीय अधिकार और गरिमा को देखकर? निश्चित ही सहायता का आधार मानव पीड़ा होनी चाहिए, पक्षपात नहीं। रेड क्रॉस संस्था की 2026 की थीम ऑन द साइड ऑफ ह्यूमैनिटी अर्थात मानवता के पक्ष में इसी भावना को व्यक्त करती है। दुनिया भर में युद्ध, जलवायु आपदाएं, महामारी, खाद्य संकट, पलायन और सामाजिक असमानताएं बढ़ रही है। ऐसे समय में मानवीय संस्थाओं की भूमिका केवल राहत बांटने की नहीं, बल्कि समाज को याद दिलाने की है कि संकट की घड़ी में भी दया और करुणा को छोड़ा नहीं जा सकता। आज के दिन हम सभी को रेड क्रॉस संस्था से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि जरूरतमंद की सहायता करना ही सच्चा धर्म है।

0: कृषक मित्रों, जब जरूरतमंदों की सहायता की बात आती है तो रक्तदान एक माध्यम बन जाता है दूसरों की मदद करने का। रक्तदान करके प्रत्यक्ष रूप से न सही, लेकिन परोक्ष रूप से हम कई जिंदगियां बचा सकते हैं। साथ ही नियमित रक्तदान करना हमारे शरीर और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसे शरीर में आयरन का स्तर संतुलित रहता है, हृदय रोग और कैंसर का खतरा कम हो जाता है। रक्तदान के बाद शरीर खाली जगह को भरने के लिए नई रक्त कोशिकाएं बनाता है, जो शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाता है। एक बार रक्तदान करने से लगभग 650 कैलोरी तक बर्न हो सकती है। दूसरों की जान बचाने का एहसास भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और तनाव एवं नकारात्मकता को कम करता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो हर 3 महीने में एक बार सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको ये बता दें कि हमारे और आपके द्वारा दिया गया रक्त का दान दुर्घटना और विभिन्न बीमारियों से ग्रसित लोगों के काम तो आता ही है, लेकिन विशेष रूप से थैलेसीमिया नामक रोग से ग्रसित लोगों के बहुत काम आता है, क्योंकि ऐसे मरीजों को एक नियमित अंतराल पर हमेशा ब्लड की जरूरत होती है। आज विश्व थैलेसीमिया दिवस भी है, इसलिए थैलेसीमिया के बारे में विशेष जानकारी के लिए हमने बात की जमशेदपुर ब्लड सेंटर के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर लव बहादुर सिंह से। आइए सुनते हैं उनसे की गई बातचीत का ये अंश। श्रोताओं, आज है विश्व थैलेसीमिया दिवस, ऐसे में आज बातें थैलेसीमिया के बारे में। थैलेसीमिया है क्या, इसमें किस तरह के लक्षण उभर कर आते हैं और फिर इससे हम कैसे बच सकते हैं, इन तमाम बातों को बताने के लिए आज हमारे साथ हैं जमशेदपुर ब्लड सेंटर के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर लव बहादुर सिंह। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि थैलेसीमिया वास्तव में है क्या।
1: थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी है जो कि वंशानुगत जो है माता पिता से आता है।
0: तो इसमें कैसे पता चले लोगों को कि कोई थैलेसीमिया का शिकार हो रहा है कोई भी बच्चा?
1: अगर उसको बचपन से ही खून की कमी होती है तो उसमें एक टेस्ट होता है और टेस्ट के जरिए ये पता लगाया जाता है कि क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी है कि नहीं, और क्या उसमें जो है फीटल हेमोग्लोबिन का मात्रा जो कि नियोनेटल में ज़्यादा रहता है वो धीरे धीरे एज बढ़ते हुए कम हो जाता है, इसमें कम नहीं होता है। उसका फीटल हेमोग्लोबिन का मात्रा उसमें इतना कम नहीं होता जितना कि एडल्ट में होता है, उसमें उसी तरह से ज़्यादा रहता है फीटल हेमोग्लोबिन, तो उसी से पता करते हैं हम लोग और तरह तरह का टेस्ट किया जाता है।
0: आपने कहा कि एक जेनेटिक बीमारी है, तो क्या माता पिता दोनों को होने से ऐसा होता है या दोनों में से किसी एक को होने से बच्चों में उसका असर देखने को मिलता है?
1: अगर माता पिता दोनों वाहक हैं तो उसमें 50% बच्चे माइनर से ग्रसित होंगे, 25% मेजर थैलेसीमिया से ग्रसित होंगे और 25% बच्चे नॉर्मल होंगे।
0: क्या ऐसा कभी देखा गया है कि किसी विशेष क्षेत्र के बच्चे इससे प्रभावित होते हैं?
1: हाँ, ऐसा है। इधर ये उड़ीसा का एरिया, ये कुछ बंगाल का एरिया और झारखंड के एरिया में ये बीमारी ज़्यादा पाया जाता है।
0: क्या इसका बचाव हो सकता है और फिर इसके लिए आमतौर पर जो चिकित्सक होते हैं क्या करते हैं?
1: इसका मेन जो है इसका उपचार जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट है जो कि बहुत कॉस्टली है, और उसके अलावे जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट करने से इसमें आयरन डिपोजिशन बॉडी में होते रहता है, उसके लिए दवा खाने से और सही समय से ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने से ही लाइफ भर इसमें ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा अनलेस अनटिल यू हैव बोन मैरो ट्रांसप्लांट।
0: तो कितने दिनों के अंतराल में जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, कितने दिनों के अंतराल में करना पड़ता है?
1: ये डिपेंड करता है आपका थैलेसीमिया मेजर है और आप कितना जो है अच्छा डाइट ले रहे हैं, कितना डॉक्टर का सलाह मान रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग इसमें जैसे हम लोग किसी को ही बताते हैं कि हीमोग्लोबिन 8 से 10 तक रखो, वो लोग जो है बहुत हेमोग्लोबिन डाउन होने के बाद आता है, तो उसमें तो नेचुरल है कि फ्रीक्वेंट ब्लड का रिक्वायरमेंट होगा।
0: तो थैलेसीमिया को कितने कैटेगरी में बांटा गया है?
1: थैलेसीमिया मेजर माइनर।
0: तो ये दोनों में अंतर क्या है?
1: ये दोनों में अंतर यही है कि मेजर जो है ना उसमें उसमें ये

0: ये जो है क्रोमोसोम्स का जो दो स्टैंड होता है अल्फा बीटा दोनों, तो उसमें जो है दोनों इन्वॉल्व रहता है, इसमें एक रहता है।
1: कोई भी ब्लड बैंक या मान लीजिए जमशेदपुर ब्लड सेंटर है, किसी भी ब्लड बैंक का क्या रोल होता है थैलेसीमिया पेशेंट के लोगों के लिए, क्योंकि उनको लगातार ब्लड का जो चेंज करना पड़ता है और लगातार उन्हें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो कोई भी ब्लड बैंक कितना योगदान उसमें दे सकता है?
0: जैसे कि गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है और हम लोग उसको 100% फुलफिल करते हैं, हम लोग थैलेसीमिया पेशेंट को ब्लड का ब्लड फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, और हमारे यहाँ नियर अबाउट 700 थैलेसीमिक पेशेंट जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, इसलिए हम झारखंड में हम लोग का ही ऐसा एक ये ब्लड बैंक है जो कि मैक्सिमम जो है ब्लड थैलेसीमिया के लिए उपलब्ध कराता है।
1: ये थैलेसीमिया पेशेंट को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, या फिर उन माता पिता को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जिनके बच्चे थैलेसीमिया से ग्रसित हैं?
0: हम उन माता पिता को यही सलाह देंगे कि अगर एक बच्चा थैलेसीमिया अगर पाया जाता है तो दूसरा जो है बच्चा चेक कराएं, जब सोच समझ करके ये
1: दूसरा इशू करें।
0: और ख़ास करके अगर पहले तो ये मैरिज के बिफोर ही टेस्ट कराएं, अगर उससे पता चल जाता है तो इस तरह का काम मत करें।
1: जो भी घर के बच्चे थैलेसीमिया से ग्रसित है, क्या आप लोगों ने उनके बच्चों को किस तरह से आप जागरूक करते हैं और क्या समझाने की आप लोगों ने कोशिश की?
0: हम लोग एक बार ये ट्राई किए थे कि जो लोग थैलेसीमिया पीड़ित हैं उनके अभिभावक को समझाए थे कि अगर सेम फेनोटाइप का ब्लड उन लोगों को ट्रांसफ्यूज किया जाए तो दो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का अंतराल जो है वो बढ़ सकता है और एक उन लोगों के बेटरमेंट के लिए, लेकिन उसमें कोई भी थैलेसीमिया का अभिभावक आगे हम ये नहीं आए।
1: तो इसमें हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी जागरूकता की कमी है। अंत में एक संदेश आम लोगों के लिए जो थैलेसीमिया के बारे में कम जानते हैं, और अगर उनके घर में वैसा कोई बच्चा आता है तो वो क्या करें?
0: अगर बच्चा आ जाता है तब तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट का ही उपाय है, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आप जो है सामर्थ्यवान हैं तो उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा दीजिए, और नहीं तो उसको समय समय पर जांच करवाइए, खून की कमी है तो उसको ट्रांसफ्यूजन करवाइए।
1: डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी थैलेसीमिया के बारे में। उम्मीद है हमारे श्रोता जो आपको सुन रहे होंगे इसका लाभ ज़रूर उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैलेसीमिया जरूरी जानकारी, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर लव बहादुर सिंह।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: किसान भाइयों, वैसे तो मई का महीना भीषण गर्मी का होता है, लेकिन फिलहाल मौसम का चाल कुछ बदला हुआ है। लेकिन फिर भी पशुपालन में मुख्य ध्यान पशुओं को इस मौसम में हीट स्ट्रोक और गर्म हवाओं से बचाने पर होना चाहिए। पशुओं को सीधे धूप से बचाएं, पशुशाला में पंखे, कूलर या खस की टट्टियों का प्रयोग करें, छत पर पानी का छिड़काव करें, पशुशाला को साफ रखें और नमी से बचाएं, फर्श पर सूखी रेत या पुआल बिछाएं ताकि पशु आरामदायक महसूस कर सकें। पशुओं का हरा चारा जैसे चरी, सुडान या लोबिया पर्याप्त मात्रा में दें। साथ ही पशुओं को 24 घंटे स्वच्छ और ताज़ा पानी उपलब्ध कराएं। पानी में थोड़ा नमक मिलाकर दे सकते हैं ताकि शरीर में सॉल्ट की कमी न हो। मई माह में गलाघोटू और लंगड़िया बुखार से बचाव के लिए पशुओं का आप टीकाकरण करवा सकते हैं।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अपने घर।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
3: रुक जा बुड्ढू।
4: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
2: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: किसान भाइयों, गर्मी के दिनों में पर्याप्त पानी पीना शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए बहुत जरूरी है। यह पसीने से खोए हुए तरल पदार्थों की भरपाई करता है, पाचन में सुधार करता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है, विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है और हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन को रोकता है। गर्मी में पसीने के माध्यम से शरीर पानी खोता है। पर्याप्त पानी पीने से शरीर का प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम बना रहता है और तापमान नियंत्रित रहता है। यह शरीर को हाइड्रेटेड रखता है, जिससे थकान कम होती है, ऊर्जा का स्तर बना रहता है और सिरदर्द जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। पर्याप्त पानी पाचन को दुरुस्त रखता है और कब्ज जैसी समस्याओं को रोकने में मदद करता है। इससे त्वचा हाइड्रेटेड रहती है, चमक बढ़ती है और मुहासों व सूखापन कम होता है। पुरुषों के लिए लगभग 3 लीटर और महिलाओं के लिए लगभग 2 लीटर पानी का सेवन सामान्य माना जाता है, लेकिन गर्मी में इसे बढ़ाने चाहिए। मटके का पानी पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है। और अब आइए रुक करते हैं मनोरंजन की ओर, सुनते हैं ये भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं शारदा सिन्हा।

शारदा सिन्हा की आवाज में आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत। किसान भाइयों, अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडार गृह की सफाई करें तथा अनाज को सुखा लें। दानों में नमी 12% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भंडार घर को अच्छे से साफ कर लें। छत या दीवारों पर यदि दरारें हैं तो इन्हें भरकर ठीक कर लें। बोरियों को 5% नीम तेल के घोल से उपचारित करें। बोरियों को धूप में सुखा कर रखें, जिससे कीटों के अंडे तथा लार्वा तथा अन्य बीमारियां नष्ट हो जावें। ज्वार, मक्का, बाजरा जैसे चारा फसलों की बुआई इस सप्ताह आप कर सकते हैं। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है। बीजों को 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर डालें और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें। और अब चलते चलते आपको बता दें कि इस मौसम में यानी कि गर्मी और प्री मानसून के दौरान फूलों के पौधों की देखभाल के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि तेज धूप और तापमान में वृद्धि पौधों को प्रभावित कर सकती है। पौधों को सुबह जल्दी या शाम के समय पानी दें ताकि पानी वाष्पित न हो जाए। मिट्टी को मध्यम रूप से नम रखें, लेकिन बहुत अधिक पानी देने से बचें। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत का ये सफर बस यहीं तक। राजेश को दीजिए अनुमति। जोहार।

दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 6:55 हुए हैं। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में।

फोन पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डाले। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया।

कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे शुभेंदु अधिकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में लगी मुहर। झारखंड भाजपा ने दी बधाई। हजारीबाग और रामगढ़ समेत कई जिलों में बिजली पानी संकट के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन। झामुमो ने भाजपा की कार्यशैली पर उठाए सवाल। बोकारो पुलिस विभाग में हुए 10 करोड़ रुपए से अधिक के वेतन घोटाले की जांच तेज। उच्च स्तरीय समिति ने की दस्तावेजों की गहन समीक्षा। मौसम विभाग ने कल के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। रांची, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ और खूंटी में ओलावृष्टि की चेतावनी। और रांची में हॉकी इंडिया आयोजित करेगा स्टेट लेवल कोर्स। अंपायरों और टेक्निकल ऑफिशियल्स को दी जाएगी विशेष ट्रेनिंग। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भाजपा विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अधिकारी के चयन की औपचारिक घोषणा की।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: शुभेंदु अधिकारी के भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर झारखंड भाजपा ने बधाई दी है। नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित होगा। राज्य में बिजली और पानी एवं

0: संकट को लेकर भाजपा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में आज हजारीबाग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राज्य सरकार को केंद्र से पेयजल सुधार के लिए मिले 12,700 करोड़ रुपए का बंदरबांट कर लिया गया है। मौके पर मौजूद सांसद मनीष जायसवाल ने भी हजारीबाग में बिजली की बदहाल स्थिति और पानी के हाहाकार पर गहरी चिंता जताई।
1: इस शहर में बिजली है और ना पानी का ठीक से व्यवस्था है। पहले अगर 15-20 हजार घरों में पानी आता था तो अब वो घट करके 8-9 हजार ही बच गया। दिन भर में 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा इस प्रकार से बिजली रह रही है। जिस प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार के आत्मा को जगाना चाहती है कि जो बेसिक सुविधा है बिजली पानी जो बेसिक अधिकार है लोगों का वो दो, इसको जगाने के लिए आज का आंदोलन कर रही है।
0: उधर रामगढ़ में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा और बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने कोर्ट मोड़ से समाहरणालय तक विरोध मार्च निकाला। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। जमशेदपुर में महंगाई के खिलाफ आयोजित प्रदर्शन के दौरान उन्होंने भाजपा की कार्यशैली पर सवाल उठाए। श्री सारंगी ने दावा किया कि झारखंड में झामुमो के नेतृत्व वाला महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है।
2: गठबंधन के सभी दलों को साथ में लेकर सरकार काम कर रही है समन्वय के साथ, तो निश्चित रूप से असम के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ के लोगों का विश्वास बढ़ा है और आने वाले समय में भी हम बहुत मजबूती के साथ वहाँ संगठन को खड़ा करेंगे और चुनाव में भी भाग लेंगे।
0: गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा है कि देवघर समेत पूरा संताल परगना क्षेत्र विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सांसद ने क्षेत्र में चल रही प्रमुख परियोजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि नए पावर ग्रिड, बेहतर रेल कनेक्टिविटी और वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेनों से आधारभूत ढांचे को अभूतपूर्व मजबूती मिल रही है। नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में कल से देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र रोग अनुसंधान सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। आर्मी हॉस्पिटल और अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी के सहयोग से आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ करेंगे। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
3: पिछले 2 दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले 2 दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले 2 दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: बोकारो पुलिस विभाग में हुए 10 करोड़ रुपए से अधिक के वेतन घोटाले की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति आज बोकारो पहुंची। समिति के अध्यक्ष और राज्य उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव डॉ. अमिताभ कौशल ने सर्किट हाउस में जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। डॉ. कौशल ने बताया कि घोटाले की जड़ें गहरी हैं और इसकी बिंदुवार जाँच की जा रही है।
4: तो हमारे बेंचमार्क हैं वो ट्रेजरी कोड है। ट्रेजरी कोड जो हमारे बेंचमार्क हैं वो ट्रेजरी कोड है, झारखंड फाइनेंशियल रूल्स हैं और पुलिस मैनुअल, ये 3 चीजें हैं। तो उसके अलावा फाइनेंस डिपार्टमेंट के समय समय पर निर्गत इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने हैं, उसके बेसिस पे हम लोग एग्जामिन करके क्लियर फाइंडिंग्स पे पहुंचे।
0: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आगामी 11 और 12 मई को रांची में दो दिवसीय एक्सपोजर विजिट का आयोजन करने जा रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम

0: माध्यम से राज्य के जनजातीय छात्रों को राजधानी के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों, ऐतिहासिक स्मारकों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को करीब से देखने का मौका मिलेगा। आज रांची में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया गया। विश्व रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट दिवस के अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रदेशवासियों और संस्था के स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। राजभवन से जारी अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि रेड क्रॉस से जुड़े कार्यकर्ताओं का योगदान समाज के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। राजधानी रांची में जल संरक्षण पर केंद्रित सुजलम झारखंड 2026 का भव्य आयोजन हुआ। जल संसाधन विभाग और सस्टेनेबल कॉमर्स फोरम के इस साझा प्रयास में विशेषज्ञों ने जल सुरक्षा की चुनौतियों पर चर्चा की। मौके पर राज्य के जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने बढ़ते जल संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की है।
1: हम नई पद्धति से जिस जगह और जगह जो ये पहाड़ी इलाके में पानी का रोकने का जो टेक्निक ये सभी अपनाए हैं, उस टेक्निक को हम लोग लेकर के झारखंड में भी ये करेंगे। अभी हम लोग झारखंड में पीरस्टाण में नया प्रोजेक्ट है जिसमें 120 तालाब में हम लोग पानी खेत में तो देंगे ही और तालाब में ही स्टॉक करके रखेंगे।
0: और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने राज्य में अगले कुछ दिनों भारी बारिश और ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम केंद्र के अनुसार 14 मई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होगी। कल रांची, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ और खूंटी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में ओलावृष्टि के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। हॉकी इंडिया द्वारा आगामी 22 से 24 मई तक रांची में अंपायरों और टेक्निकल ऑफिशियल्स के लिए स्टेट लेवल कोर्स का आयोजन किया जाएगा। ईस्ट जोन के इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में झारखंड समेत विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इस कोर्स के लिए खिलाड़ियों के पास नेशनल चैंपियनशिप में खेलने और ऑफिशिएटिंग का काम से कम 3 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। हॉकी इंडिया ने इच्छुक उम्मीदवारों से 10 मई तक ऑनलाइन नामांकन करने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे शुभेंदु अधिकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में लगी मुहर। झारखंड भाजपा ने दी बधाई। हजारीबाग और रामगढ़ समेत कई जिलों में बिजली पानी संकट के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन। झामुमो ने भाजपा की कार्यशैली पर उठाए सवाल। बोकारो पुलिस विभाग में हुए 10 करोड़ रुपए से अधिक के वेतन घोटाले की जांच तेज। उच्च स्तरीय समिति ने की दस्तावेजों की गहन समीक्षा। मौसम विभाग ने कल के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। रांची, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ और खूंटी में ओलावृष्टि की चेतावनी। और रांची में हॉकी इंडिया आयोजित करेगा स्टेट लेवल कोर्स। अंपायरों और टेक्निकल ऑफिशियल्स को दी जाएगी विशेष ट्रेनिंग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे धनबाद जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे धनबाद संवाददाता।
1: धनबाद शहर में फुटपाथ दुकानों और ठेले खोमचों की वजह से लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को जल्द राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। धनबाद नगर निगम ने कोर्ट रोड से डीआरएम चौक तक के फुटपाथ दुकानदारों को शहर में निर्मित वेंडिंग जोन में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बुधवार को कोहिनूर मैदान स्थित वेंडिंग जोन में लॉटरी के माध्यम से 117 दुकानदारों को दुकान आवंटित की गई। मेयर संजीव सिंह ने कहा कि वेंडिंग जोन में दुकानदारों और ग्राहकों के लिए हर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।
2: रणधीर वर्मा चौक से लेकर कोर्ट रोड तक में जितने भी साइड में जो दुकानें लग रही थी वहाँ पे जाम की समस्या को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि जो हमारा वेंडिंग जोन बना हुआ है वहाँ पर इन सभी लोगों को एक लॉटरी के माध्यम से दुकान वहाँ आवंटन कराया जाए और उसी प्रोसेस में हम लोग वहाँ पे 177 दुकान जो है हम लोग वहाँ पे आवंटित करने का काम कर रहे हैं, उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं और सड़क भी बन रही है।
1: वहीं नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने बताया कि शहर के कई और स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां भविष्य में नए वेंडिंग जोन बनाए जा सकें।
3: एक साल से ऊपर हो चुका है लेकिन वहाँ पर कोई शिफ्ट नहीं हुआ। उसके दो रीजन थे, एक तो अप्रोच रोड नहीं थी, कहीं से भी अप्रोच नहीं रोड नहीं थी, एक शेड बना रखा था और शेड के कारण जो रोड जाती थी वो ब्लॉक हो रखी थी, तो वो रोड बनना चालू हो गई है जो जिला स्तर से बनवाई जा रही है और काफी चौड़ी रोड है और सामने तो ईवीएम वेयर हाउस भी है, तो इसलिए उस रोड का इम्पोर्टेंस भी बहुत है, इसलिए काफी चौड़ी और काफी अच्छी रोड बनाई जा रही है अप्रोच रोड। आने वाले एक वीक के अंदर या दो वीक के अंदर जैसा भी एक बार हम अपडेट ले लेंगे वो रोड कम्प्लीट हो जाएगी और इसलिए वहाँ पर जो एक इशू था कि कस्टमर नहीं जा पाते थे वो वहाँ पर जाएंगे।
1: शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीपीएल कोटे में एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर वेबसाइट rte.dhanbad.in पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत किए जा रहे हैं। इसके लिए आवेदक को संबंधित वार्ड पार्षद या पंचायत के मुखिया से अपने घर का पता सत्यापित कराना अनिवार्य होगा, साथ ही घर के बाहर खींची गई जियो टैग तस्वीर लोकेशन के साथ अपलोड करनी होगी। 30 मई 2026 तक अभिभावक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं बीपीएल कोटा में एडमिशन के लिए अभिभावक को सही जानकारी देने से संबंधित एफिडेविट भी जमा करना होगा। गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंदुआडी में गैस रिसाव की वजह से क्षतिग्रस्त हाईवे और ट्रैफिक डाइवर्जन इन दिनों राजनीति का नया केंद्र बिंदु बना हुआ है। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने इस मुद्दे को लेकर कल से आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कई बार इस मुद्दे को राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के समक्ष उठाया गया लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है।
4: केंदुआ, छाताटाड़, लोयाबाद, पुटकी, खोखस, विक्रेता सभी हमारे सब व्यवसायी साथी लोग आए थे और सब लोगों से बातचीत हुई है। फिर पिछले बार जो हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम किया था और भ्रम फैला के जिला प्रशासन के आग्रह पर उसने हम लोग वहां से स्थगित किए थे उसको, लेकिन उसका कोई फलाफल निकला नहीं। तो एक सांकेतिक रूप में यह प्रशासन को मैसेज देने के लिए धनबाद के लाइफ लाइन जो है हमारा NH, यहाँ इससे हजारों लोगों की रोजी रोटी टिकी हुई है और पूरा धनबाद से लेकर के सब लोग का काफी परेशानी हो रही है उससे, और 24 घंटे का अनशन पर हम बैठेंगे। उसमें हमारे जितने व्यवसायी भाई हैं सब लोग पांचों जगह के और धनबाद के लोग भी इसमें हमको सहयोग भी करेंगे।
1: विधायक के आंदोलन को स्थानीय व्यापारियों का भी साथ मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर सांसद समेत अन्य नेताओं ने भी इस रास्ते से आवागमन पुनर्बहाल करने को लेकर आवाज उठाई है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद।
0: धनबाद जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। इस समय शाम के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है बांग्ला कार्यक्रम।

बांग्ला कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पत्रिका

0: दोस्तों कहते हैं स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, और स्वस्थ तन कैसे होगा अच्छे खान पान और व्यायाम से अपना ध्यान रखकर। लेकिन कई बार महिलाएं जो हैं वो अपने खान पान पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देती। यही कारण है कि हमारे देश में ज्यादातर महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं, और इसलिए आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि किस तरह के भोज्य पदार्थों से हम एनीमिया से बचाव कर सकते हैं। स्वास्थ्य पत्रिका कल्याणी में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त जयश्री। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार जोहार। एनीमिया यानी खून की कमी से बचाव के लिए बहुत ही मुश्किल या बहुत ही जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ती। एनीमिया मुख्य रूप से शरीर में आयरन, विटामिन B12 और फोलेट की कमी के कारण होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को सामान्य रखने और एनीमिया से बचाव के लिए अपने दैनिक आहार में कुछ भोज्य पदार्थों को शामिल करने से हम इससे निजात पा सकते हैं। आयरन लाल रक्त कोशिकाओं और हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, और इसके लिए हमें हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, जैसे कि पालक, मेथी, सरसों के पत्ते और बथुआ आयरन और फोलेट के बेहतरीन स्रोत हैं। मसूर की दाल, चना, राजमा और सोयाबीन में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। दोस्तों मुनक्का, खजूर, अंजीर और कद्दू के बीज आयरन का अच्छा विकल्प है। गुड़ और काले तिल का सेवन आयरन की कमी को दूर करने में बहुत प्रभावी है दोस्तों। और अगर मांसाहार विकल्प की बात करें तो रेड मीट, मछली और विशेष रूप से चिकन या मटन का लीवर हीम आयरन से भरपूर होते हैं, जिसे शरीर बहुत आसानी से अवशोषित कर लेता है। एक और बात, भोजन में मौजूद आयरन को शरीर में ठीक से अवशोषित होने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है, और इसके लिए हमें खाने चाहिए खट्टे फल, जैसे कि नींबू, संतरा और मौसमी का सेवन करना भोजन के साथ फायदेमंद होता है। आंवला, अमरूद और शिमला मिर्च विटामिन सी के बहुत अच्छे स्रोत हैं। और दोस्तों ये विटामिन नई लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, जो है विटामिन B12 और फोलेट यानी कि फोलिक एसिड, और ये हमें मिलता है डेयरी उत्पाद जैसे कि दूध, दही और पनीर से, जो कि विटामिन B12 के अच्छे स्रोत हैं। अंडे और लीन मीट का सेवन भी शरीर में विटामिन B12 की कमी को पूरा करता है। फोर्टिफाइड अनाज, ओट्स और हरी पत्तेदार सब्जियां फोलेट प्रदान करते हैं। और कुछ छोटी बातों का भी हम ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, जैसे खाना पकाने के लिए लोहे की कढ़ाई या बर्तनों का उपयोग करने से भोजन में प्राकृतिक रूप से आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। और हाँ, भोजन के तुरंत बाद या साथ में चाय या कॉफी का सेवन करने से बचें, क्योंकि इनमें मौजूद कैफीन और टैनिन आयरन के अवशोषण को कम कर देते हैं। आहार में ताजे और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दें, और इस तरह से छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम एनीमिया से बच सकते हैं, और ऐसे भोज्य पदार्थ को शामिल करना बेहद जरूरी है। और दोस्तों जिस तरह से हमारा शरीर हमारे लिए बेहद जरूरी है, वैसे ही इस शरीर की धड़कन हमारे बच्चे होते हैं, और बच्चे अगर किसी तरह के स्वास्थ्य समस्याओं से घिरे हों तो हम चैन से बिल्कुल नहीं रह पाते, खाना पीना सब बंद हो जाता है। इसलिए बच्चों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आजकल बच्चों में मोटापा उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। आजकल बहुत सारे बच्चे मोटापा का शिकार हो रहे हैं। तो आइए सुनते हैं बच्चों में मोटापा प्रभावित स्वास्थ्य विषय पर भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर के चितलांगिया, और उनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश कुमार।
1: श्रोताओं, आज के दिनों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि छोटे बच्चे मोटापा के शिकार हो रहे हैं। मोटापा बढ़ने से क्या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती है और इसका क्या दूरगामी परिणाम बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, आज के अंक में हम बातें करेंगे इसी विषय पर। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर के चितलांगिया। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: डॉक्टर साहब, बच्चों में जो मोटापा होता है, किस तरह से मोटापा पड़ता है, उसका क्या असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, और फिर हम इसे कैसे बच सकते हैं?
2: मोटापा खूब कॉमन होते जा रहा है, विशेष करके बच्चों में। अभी हम लोग मोटापा को एक डिजीज का एंटिटी दे दिए हैं। मोटापा में एक्चुअली हम लोग मोटापा का मेजरमेंट करते हैं BMI से। BMI हुआ बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं उसको। इसका एक फॉर्मूला है, एज अपॉन हाइट इन मीटर का स्क्वायर कर देते हैं। जितना एज है उतना एज डालते हैं ऊपर में, और नीचे में उसकी हाइट मीटर में नाप करके उसको स्क्वायर कर देते हैं। ये kg पर मीटर स्क्वायर ये अच्छा आता है इंडेक्स। तो ये इंडेक्स में ऐसा है कि हम लोग बिलो 25 18.5 टू लेस देन 25 ये नॉर्मल आता है। यदि 18.5 से नीचे है अगर उसका BMI तो ऑब्वियस अंडरवेट हो गया, तो अंडरवेट भी इसमें हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, और ओवरवेट तो निश्चित रूप से 25 से ऊपर हो गया, और ओबीज हम लोग 30 से अगर ज़्यादा है तो ये ओबीज हो गया, और 30 से 35 40 हुआ है तो ये खतरनाक हो गया।
1: तो बहुत ज़्यादा अगर वेट हो जाता है तो किस तरह से खतरनाक होता है ये?
2: ज़्यादा वेट होने से इसमें यूजुअली हम लोग देखते हैं कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि 110% एक रफली हम लोग देख लेते हैं कि जितना रिक्वायरमेंट है उससे अगर 110% ज़्यादा हो गया तो उसको हम लोग मान लेते हैं ओवरवेट है, और उससे और ज़्यादा है तो फिर ओबेसिटी हो गई। स्किन फोल्ड, छोटे बच्चों में हम लोग स्किन फोल्ड थिकनेस मेजर करते हैं, ट्राइसेप्स बाँह जो है फर्स्ट उसमें पीछे में बैक में ट्राइसेप मसल होता है उसका सबक्यूटेनियस टिश्यू का फैट हम लोग मेजर करते हैं, मोर देन 30 mm रहने से उसको हम लोग ओवरवेट मानते हैं। मिड एब्डोमन में भी हम लोग नापते हैं स्किन थिकनेस, उससे भी नाप करके हम लोग मेजर करके छोटे बच्चों में पता कर लेते हैं कि ओबेसिटी है कि नहीं है। ओबेसिटी का सबसे बड़ा कुप्रभाव है कि ये बॉडी में एक शिथिलता कॉज करता है, जो ज्यादा मोटा होगा वो एक्टिव, ये विशियस साइकिल हो गया, वो और मोटा होते चला जाएगा, वो एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी करेगा ही नहीं। और मोटापा में सबसे बड़ा डिमेरिट है कि बॉडी में क्या होता है, कुछ ऐसा चेंजेज होता है आपकी बॉडी में, हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड का लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा, लिपिड का लेवल ज्यादा बढ़ेगा, इंसुलिन का लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा, ये देखा जाता है। तो ये दोनों बढ़ने

0: से क्या होता है, लास्ट में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर होने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कॉमन हो जाता है।
1: जी
0: इसके अलावा एक तो चलना फिरने में दिक्कत है, वो भी लेथार्जिक हो जाता है।
2: आजकल के बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि वो मोटापा से बचें?
0: मोटापा से बचने के लिए एक्सेसिव ईटिंग जो एक्सोजीनस फैक्टर है, हाँ, ज्यादा खा रहे हैं तो उसमें क्या है कि दो मील्स के बीच में जो स्नैक्स लेते हैं उसको आप कर्टेल कीजिए। दूसरा, अवेयर कीजिए, जैसे जो मिठाई है, स्वीट्स है और रिफाइंड फूड है, उससे आप बचिए।
2: स्नैक्स पे भी ध्यान देना है, लेकिन
0: स्नैक्स पर भी ध्यान देना है, जंक फूड को अवॉइड करना है। और इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या हो गया, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई।
2: जी बिल्कुल,
0: पहले भी बच्चे खाते थे लेकिन अभी फिजिकल एक्टिविटी, इंडोर एक्टिविटी ज़्यादा हो गई। उसमें क्या है कि बच्चे नेट में, मोबाइल में और टीवी में ज़्यादा व्यस्त रह रहे हैं। बच्चों का जो इवनिंग का जो बचपन था वो खत्म होते जा रहा है।
2: तो एक संदेश, एक सलाह बच्चों के लिए ताकि वो मोटापा से बचे रहे।
0: बच्चे की देखभाल तो पेरेंट्स करते हैं, तो उनको जैसे मैंने बताया कि जो दो मेन मील है उसके बीच में आप स्नैक्स डालिए, और ऐसा स्नैक्स डालिए जो बच्चों को भी पसंद आए और जिसका कैलोरी वैल्यू कम हो और जिसमें फाइबर कंटेंट हो। दूसरा, बच्चे को आउटडोर एक्टिविटी के लिए प्रमोट कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट और फैक्टर है इसमें ओबेसिटी के लिए, वो क्या होता है, डिस्टर्ब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, है ना, ये एक ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बच्चा अगर डिप्रेस्ड रहता है, बच्चा अगर लोनलीनेस है, तो वो क्या करेगा, वो खाता ही है।
2: ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता
0: है। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि इस तरह के बच्चों में खाने की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसको भी हम लोग को सुधार करना है।
2: तो श्रोताओं, आपने सुना कि बच्चों में मोटापा होने के कई कारण हैं, इन कारणों को हम हटा सकते हैं। उसके लिए बच्चों के माता पिता को इस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। माता पिता अगर ज़्यादा जागरूक होंगे तो बच्चों में बढ़ता मोटापा को वो रोक सकते हैं, जिससे बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे और उन्हें भी परेशानी कम होगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, बच्चों में मोटापा प्रभावित स्वास्थ्य विषय पर। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर के चितलांगिया और उनसे बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी राजेश कुमार। और चलते चलते आइए सुनते हैं सिलसिला फिल्म में ये खूबसूरत गीत, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन की आवाज में।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

दोस्तों, वक्त का ये इशारा है कि हमें आपसे लेनी होगी विदा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इसी दुआ और शुभकामनाओं के साथ अपनी रेडियो दोस्त जयश्री को दीजिए विदा। पुनः मिलने के वादे के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जोहार।

साप्ताहिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पत्रिका कल्याणी अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। फिल्म संगीत थोड़ी ही देर में।

हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपकी फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।

0: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
1: ज्ञान विज्ञान
2: इतिहास के पन्नों से,
1: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
0: मौसम का मिजाज,
1: अपने शहर की खबरें,
2: बातों मुलाकातों के साथ
0: सुरीला मनोरंजन
1: और भी बहुत कुछ।
0: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
2: दिन के 11:05 से 12 तक
1: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
3: नमस्कार जमशेदपुर।
4: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
5: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
4: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
5: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से प्रस्तुत है फिल्म संगीत सिर्फ तुम। इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की, बोल हैं समीर के, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

गीतकार हैं समीर, संगीतकार अनु मलिक, अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ों में। लीजिए सुनिए फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके का ये गीत।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में लीजिए सुनिए जावेद अख्तर का लिखा, राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया फिल्म लावारिस का ये गीत।

मुझसे दोस्ती करोगे इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी राहुल शर्मा ने, आवाजें थी लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की। संग्राम फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम श्रवण, आवाजें कुमार सानू, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए अभिजीत की आवाज में फिल्म यस बॉस का गीत। शब्द रचना है जावेद अख्तर की, संगीत निर्देशन जतिन ललित का।

अभिजीत के गाए इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहाँ राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। संवैधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
0: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
3: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल के वेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट 1 महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
4: 1 साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट है, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
5: पिछले 2 दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले 2 दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले 2 दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में ये लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुँच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
6: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था

में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस VCK IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Good evening, listeners. Welcome to our program, Current Affairs. I'm Tina Jha. Today, we'll be talking about Somnath, Bharat's invincible spirit. To talk about Somnath and Bharat's unconquerable spirit and how in a world marked by divisions, Somnath gives us a civilizational message of shared unity and prosperity, I'm joined by two distinguished guests, Padmashri Vishnu Pandyaji, he's a historian and author, and Ms. Aditi Tandon, senior journalist. For centuries, the Somnath Temple has not just as a place of faith, but as a symbol of resilience. Attacked, rebuilt, and revived time and again, its story is deeply woven into India's civilizational journey. Marking 75 years since the restored temple was reopened to devotees, Prime Minister Narendra Modi has written an article in which he says that every part of Bharat is sacred, bound together by a sense of oneness that transcends geography, and that in a world increasingly marked by divisions, this spirit of unity is more relevant than ever. The Somnath will continue to stand tall in all its glory because the sense of unity and shared civilizational consciousness lives on in the heart of every Indian, said the Prime Minister. In fact, he also remembered the countless people who sacrificed their lives to protect Somnath and those who rebuilt it generation after generation, ensuring that this beacon of faith and cultural continuity continues to stand tall. Earlier this year, the Prime Minister visited the Somnath for the Somnath Swabhiman Parv, marking 1,000 years since the first attack on this temple. And on the 11th of May this year, he will return to the Somnath to commemorate 75 years since the restored temple was inaugurated by India's first president, Dr. Rajendra Prasad. So, pehla sawal historian Padmashri Vishnu Pandya ji se. पांड्या जी, सोमनाथ को अक्सर लोग सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की पहचान भी मानते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां कई बार जाते हैं और वहां का जिक्र करते हैं. आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? हमारे लिसनर्स को, हमारे श्रोताओं को अगर आप बता सके कि सोमनाथ में ऐसा क्या है जो उस जगह से लोगों का अपने आप एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है.
1: देखिए, नरेंद्र मोदी जी इतिहास बोध के आदमी है, वर्षों से है, आज से नहीं. और परंपरा में जिस प्रकार का एक सातत्य रहना चाहिए उसके अनुसार वो चलते हैं. उनके अनुसार जो सोमनाथ की जो बात है वो केवल मंदिर की नहीं है, उन्होंने लिखा भी है, हमारी संस्कृति विनाश से निर्माण, इस पर आधारित है. बहुत से विनाश आए, आक्रमण आए, बाकी सब कुछ हुआ, लेकिन पुनः एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, 50 बार हमने पुनः निर्माण किया. कुछ ऐसे उदाहरण भी है, जैसे कि हमारे यहाँ प्राच्य विद्या, पुरातत्व विद्या का लोथल स्थान है
0: जी,
1: 5,000 साल पहले का है. 5,000 साल में उस पर 4 बार सुनामी, समुद्र का विनाश आया, चारों बार लोगों ने इकट्ठा होकर पुनः खड़ा किया. सोमनाथ पर अनेकों आक्रमण आए और फिर भी लोगों ने बार बार उनका पुनर, केवल राजाओं ने नहीं, लोगों ने भी. मैं उनका एक उदाहरण देना चाहता हूँ. ईस्वी सन 1400, तब एक बार आक्रांताओं ने मंदिर को नष्ट किया.

0: उस आधार पर वो खड़ा और उसी आधार पर वहां से जो कुछ बना, कुछ संकल्प हुए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक शब्द दिया था, संकल्प कथा, संकल्प यात्रा, और कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति एक संकल्प ले गुजरात विशेष हो जाएगा। और उन्हीं दिनों में मैंने कहा सरदार वल्लभ भाई ये एक नींव का सबसे बड़ा ऐतिहासिक आरंभ था, ये बात सही है। और सरदार वल्लभ भाई ने जब संकल्प किया कि सोमनाथ तो होना चाहिए, फिर बात दिल्ली तक पहुंच। और सभी उन दिनों के जो लेखक हैं उन्होंने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू को ये ठीक नहीं लगा, उनका कहना था कि ये बिन सांप्रदायिक हमारा देश है, इसमें कोई देवी मंदिर को इस प्रकार पुनर्निर्माण करना सरकार के द्वारा ये ठीक नहीं है
1: जी।
0: फिर वे लोग गांधी जी के पास गए, ये घटना है, और गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि ठीक है सरकार मदद न दे लेकिन लोगों के द्वारा फंडिंग करके इनको खड़ा किया जाएगा। ये बात हुई, बाद में तो गांधी जी भी नहीं रहे, सरदार भी नहीं रहे, और जब प्रतिष्ठित हो गया, मंदिर हो गया, तो राष्ट्रपति थे राजेंद्र बाबू को आमंत्रित किया गया। और ये स्पष्ट है उन दिनों के जो सब बयान है उसमें जवाहरलाल जी ने ना कहा, वो अपने ढंग से वो सोचते थे कि भाई ये सेक्युलर स्टेट है। लेकिन राष्ट्रपति जी ने कहा कि सेक्युलर होने के बावजूद मैं सभी जगह जाता हूँ, यदि मस्जिद का पुनरोद्धार होगा तो मैं वहां भी जाऊंगा, ये देश की संस्कृति है ऐसा। और आए और सोमनाथ का जीर्णोद्धार का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, उनके बाद बार बार ये हुआ। तो ये और फिर 47 के बाद ये यहाँ जो गुजरात राज्य 1960 में बना, तब से यहाँ की जो प्रजा थी, यहाँ के जो नेता थे, उन्होंने सोमनाथ ट्रस्ट बनाया। सोमनाथ ट्रस्ट पहले भी था, उसमें दिग्विजय सिंह जी ने बड़ा काम किया, जामनगर के महाराजा ने
1: जी।
0: और ये हमारे बहुत से ऐसे राजवी थे कि जो परम सांस्कृतिक प्रतिनिधि भी थे, संस्कृति के साथ जुड़े हुए थे। तो ये हुआ और फिर सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा ये काम हुआ। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल थे अध्यक्ष, अब नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस जो स्थान है, इस स्थान को एक ऐतिहासिक बनाने की यात्रा शुरू हुई है।
1: प्रधानमंत्री 11 मई को दोबारा जा रहे हैं वहां पर। आपने जिस तरह से हमें पूरा समझाया कि किस तरह ये प्रतीक है एकता का, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने लेख में भी किया है, लेकिन अगर आज के भारत को सोमनाथ की कहानी से अगर एक सीख लेनी हो पांड्या जी, तो वो क्या होगी? और इसको मैं जोड़ूंगी आज के जियोपॉलिटिकल संदर्भ से भी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये जिक्र किया है कि आज जब दुनिया में हर जगह जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूनिटी बिल्कुल नहीं है और जिस तरह से डिविजन्स हैं कई लेवल्स पर, उस संदर्भ में उन्होंने सोमनाथ का जिक्र किया है। तो अगर एक सीख हम आज के अपने देश के और दुनिया के संदर्भ में लें तो सोमनाथ से वो क्या होगा?
0: मेरी दृष्टि से ये केवल जियो पॉलिटिकल है नहीं है, ये जियो कल्चरल भी, और सांस्कृतिक अस्मिता हिंदुस्तान की। हम बाकी विश्व की इसमें चिंता न करें, वो वहाँ शांति होगी या नहीं होगा, वहाँ युद्ध होगा नहीं होगा, वो तो अपने ढंग से वो सोचेंगे तब होगा। लेकिन भारत वर्ष में इन दिनों में युवा शक्ति को एक राष्ट्रीय जागरयाम वयम, राष्ट्र में हम सभी जगह जागते रहे, हम जहाँ भी हो जैसे भी हो, लेकिन जागृति बहुत बड़ी आवश्यक अनिवार्य है। और इसी इतिहास बोध से लेकर नरेंद्र मोदी ने गुजरात में ऐसे दो स्थान का निर्माण हुआ है, एक सोमनाथ का है और दूसरा केवड़िया कॉलोनी नर्मदा के किनारे सरदार पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, एकता की प्रतिमा। ये दोनों ऐतिहासिक है, आज तो वहाँ देश देशावर से लोग जाते हैं। तो ये इनकी इतिहास बोध की दृष्टि से ये हो रहा है। और आपने एक सवाल विदुषी को पूछा था कि युवा वर्ग इसमें कैसे जुड़ेगा, मेरी दृष्टि से और मेरे अनुभव से, मैं अध्यापक भी रहा हूं, मैं बोलता भी हूं,
1: रीसेंट टाइम्स as you like rightly mentioned, given the prime minister's outreach as well as the kind of efforts that have been undertaken in recent years, we do see that there is a renewed confidence among Indians about their national identity, about their culture, about their roots. And we are also projecting our heritage globally through yoga, through Buddhism, through spirituality. Do you also see Somnath as part of that larger story in helping India project its cultural heritage, its civilizational on the global stage?
2: Yeah, in fact, it's very interesting that the question that you asked, the fact that the Somnath temple is located in Gujarat

0: also the fact that Gujaratis are very vibrant diaspora members and they are brand ambassadors of the Indian story outside. And you spoke of soft power, of course, not just the Somnath temple, but so many other rejuvenated temple complexes in the country. You can take the Chardham Yatra, then you can take Kashi Vishwanath temple, which has been redone fully. And in fact, if you look at the statistics, you will realize, Tina, that not just domestic tourism has been boosted through this religious rejuvenation, but a lot of international tourists are also coming back. You know, a lot of Indians only live abroad who are now coming back to revisit these places of worship, all these religious shrines. Okay. So that's one very important thing. And of course, Somnath Temple is part of the larger soft power segment of India. Our rich and ancient civilization, our democratic values, and our growing global influence through yoga, which you mentioned. Then we have Bollywood. Our cuisine is doing wonders all across the world. In fact, recently, Indian cheese also made global headlines by winning two major awards at a Brazilian event. That was the first ever time.
1: Right.
0: So, you know, culture and civilization straddle so many different sectors. It's not just faith or religion. It's food, you know, it's our language, it's our practices, it's our lifestyle. So it's across sectors.
1: Your personal thoughts on how we can make our civilizational values coexist or sort of say make it a strength in today's global climate, which helps India achieve its ambitious goals and it helps us grow as individuals, balancing between history and modernity and the future, maybe balancing between history and the future.
0: See, the fact of the matter remains that, you know, the adaptive nature of Indians as we are, you know, Bharatiya Sabhyata, which we call, this adaptive nature has taken us through so much and we have not, you know, really fallen to the vagaries of time or to the vagaries of conquerors. Civilization remains our greatest strength and it is particularly important for the fact that it has helped us endure and, you know, stay strong. It's basically, Tina, our living heritage. It combines ancient wisdom, we can call it by different names, the Vedas, the Upanishads, with modern progress. See, which society can adapt as fast and as beautifully as our Indian society? We go back 5,000 years and yet we are, you know, today commanding 50% of digital transactions in the world are happening in India. So we are the same society, old and yet new.
1: Thank you, ma'am. It's been wonderful hearing your insights on this very important topic. बल्कि मेरा एक सवाल विष्णु पांड्या जी, सोमनाथ आपने बताया कि सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, भारत के लिए निरंतरता का भी प्रतीक रहा है, तो ऐसे में हमें ऐसे और क्या कदम उठाने चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास सिर्फ किताबों तक ही सीमित ना रह जाए, ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे वो इतिहास को महसूस कर सकें और उसे बखूबी समझें।
2: अग्रता क्रम में तो वैसे इतिहास का पुनर्लेखन और चिंतन होना चाहिए, ये एक बात। दूसरी बात ये है कि अध्यापकों को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए इतिहास के बारे में, जो नहीं है आज, ठीक ढंग से इतिहास सिखा जाए, दूसरी बात। तीसरी बात, लोग युवा वर्ग तक कम्युनिकेट होने के लिए ऐसे व्याख्यान भी हो सकते हैं, धर्मोपदेशक वाले या प्रोफेसर या फिलोसोफर, बाकी सब हो कर सकते हैं। हमारी नाट्य संस्कृति जो है उनको पुनर्जीवित करके ऐसी घटनाओं पर नाटक होने चाहिए। फिल्मों का भी बड़ा सशक्त माध्यम है, डॉक्यूमेंट्रीज है, उनके द्वारा भी बार बार, एक बार नहीं बार बार इसका प्रस्तुतिकरण हो तो धीरे धीरे धीरे, और मैंने, मेरा अनुभव है कि जब युवा वर्ग के सामने बोलता हूँ तो उनकी आंखों में एक प्रकार की एक स्पिरिट आ जाता है कि हमें कुछ और भी चाहिए
1: जी।
2: सच बात है, उन लोगों तक हम पहुँचे नहीं, पहुंचना चाहिए। ये धीरे धीरे व्यापक रूप से पूरे देश में हो सकता है। तो मेरे दृष्टि से पुनः एक बार हमारी परंपरा, 5000 साल से भी पहले शायद, ये परंपरा में जो विनाश से निर्माण की एक भावना है, संस्कृति इसी आधार पर टिकी हुई है। सब सोमनाथ में भी जब उत्खनन हुआ है, चार सभ्यताएं सिविलाइजेशन की अवशेष मिले हैं, तो कितने हमारी सभ्यताएं दीर्घकालीन होती होगी, इसका भी हमें ख्याल करना चाहिए। और इसके लिए योग्य माहौल बनाकर ये हम कर सकते हैं और आकाशवाणी इसमें सबसे ज्यादा निर्णायक बन सकती है।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कि सोमनाथ क्यों इतिहास में ही नहीं बल्कि आज के संदर्भ में भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है और खास करके युवा वर्ग के लिए जरूरी है कि हम इस जगह के बारे में जानें कि इसने इस देश को क्या दिया है और आज के संदर्भ में भी ये कितना प्रासंगिक है। सो द स्टोरी ऑफ सोमनाथ टेम्पल, लिसनर्स, इज नॉट जस्ट अबाउट अ टेम्पल रीबिल्ट इन

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। बर्फी फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाज़ रेखा भारद्वाज की है, गीतकार हैं सईद कादरी, संगीतकार प्रीतम।

गीतकार थे गुलजार, संगीतकार विशाल भारद्वाज। अरिजीत सिंह की आवाज़ में आपने सुना रंगून फिल्म का ये गीत। अगला गीत हमने लिया है फिल्म डी डे से, आवाज़ रेखा भारद्वाज की है, बोल है निरंजन अय्यंगर के, धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

जब वी मेट, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ उस्ताद राशिद खान की थी। गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीतकार संदेश शांडिल्य। इसके साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसके तहत आइए आज सुनते हैं ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित जगदीश प्रसाद, राग है हमीर।

0: हैं, अब समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएमके महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2025 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही

हो चुके हैं। अब संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। इसी फ्रिक्वेंसी पर कल सुबह 5:55 पर हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। शुभ रात्रि। जय हिंद।